सत्र त्रेता यदि द्वापर पूजा चार तीनों जुग तीनों दृढ़ कल केवल नाम आधार ठीक तिन्ने युग अपनी थां से महान होवन गए और मौजूदा ए कल युग इस देश से उधार केवल प्रभु दे नाम ते जप ते खड़ा कल केवल नाम आधार। धन गुरु नानक देव जी महाराज इस तरह फरमान करते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर बणीए कल युग उत्तम युगा माए, ये सब तो श्रेष्ठ युग है, उत्तम युग है, महान युग है। किस पक्ष तो महान युग है, क्योंकि जगत देखते प्रचलित यही कुछ है कि ये युग निषिद्ध है, ये युग माड़ा युग है, ये युग सब तो निचले दर्जे का युग है। जबकि धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने सतयुग त्रेता द्वापर बणीए कल युग उत्तम युगा माही, एक उत्तम युग है, एक श्रेष्ठ युग है, एक महान युग है। आखिर किस पक्षों ये लंबी चौड़ी विचारधारा धन गुरु नानक देव जी महाराज इस ढंग नाल बयान करते हैं। समय स्थान मानसिक अवस्था विच चार युगां दी जो व्याख्या है धन गुरु नानक देव जी महाराज अपने ढंग नाल प्रमाण करते हैं। प्रथम समय दे जो रूपरेखा है लंबे चौड़े शब्द विचों कुछ पंक्तियां मैं आप जी के सामने रखा जो धन गुरु नानक देव जी महाराज ने मारू राग विच उच्चारण कीतिया ने। सतयुग सत संतोख शरीरा सत सत वरते गहर गंभीरा सतयुग सात कहे सब कोई सच वरते साचा सोई। झूठ बोलना सतयुग दे मनुख नु आउंदा ही नहीं सी, उसका एक मूल कारण मनुख संतुष्ट सी, लोड़ां सीमित सन और लोड़ां दी पूर्ति प्राकृतिक रूप दे हो जांदी। प्रकृति सब दी झोली दे लोड़ां दी पूर्ति पा देंदी सी, कर देंदी सी। जंगल दे फल फुल शिकार इत्यादि खुले रूप दे उपलब्ध से आबादी थोड़ी सी सैकड़े मील तक वसों नहीं सी, झूठ बोलन लई गुंजाइश ही नहीं सी। त्रेते धर्म कला एक चूकी तीन चरण एक दुविधा सूकी। त्रेते देख विश्वास दी थां ते दुविधा आ गई, लिहाजा धर्म दी एक कला नाश हो गई, विश्वास भरोसा सिदक ए नहीं रहा, मन दिच दुविधा पैदा हो गई है कि नहीं। दुविधा इसनों कहते हैं, दो पासे भी धावना पैदा होगी है कि नहीं है। दरअसल जिस वक्त मन में ये ख्याल होता है तो मनुख ईश्वर के नेड़े होता है, उसके मन में रस होता है, टिकाऊ होता है, खेड़ा होती है, खुशी होती है। और जब दूसरा भाव दुबदा दूसरी धावना पैदा हो जाती है, शक शायद नहीं है, उदो ये दूर हो जाता है और दूरियां ते दुख नु जन्म देंदियां, दूरियां बेरसी नु जन्म देंदियां, दूरियां कल कलेश ते संताप नु जन्म देंदियां ने। महाराज कहंदे ने दुबदा दा जन्म हो गया, विश्वास दी लत टुट गई। दया द्वापर अधी होई गुरुमुख विरला चीने।

करो। शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे। गुरु रूप सत्संग जीओ सनेवर फतेह प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धार्मिक विद्वान ऐसा मनदे ने दुनिया भर दे ज्ञान नो सिर्फ दो हिस्सों च ही तकसीम किया जा सकता है, ज्यादा हिस्सों च नहीं। एक पदार्थ का ज्ञान, एक परमात्मा का ज्ञान, एक संसार का ज्ञान, एक निरंकार का ज्ञान, एक बाहर का ज्ञान, एक अंदर का ज्ञान। ज्ञान दियां सारियां धारावां इन्हां ही दो सागरां विच लीन हो जांदियां। ज्ञान कुछ भी होवे, या बाहर दा है या अंदर दा है, या पदार्थ दा है या परमात्मा दा है। ये जो दो प्रकार दा ज्ञान है, इस दा फल, इस दे हासिल करन दा मकसद जो धार्मिक विद्वान दसदे ने, वो ये पदार्थ का ज्ञान हासिल करके पदार्थ नूं अपने अनुकूल करना, अपने अनुकूल करना। समझ आईए मनुख नूं, अगर पदार्थ मेरे अनुकूल नहीं है, मैं इस तों सुख नहीं ले सकता, इस तों सुख नहीं ले सकता। हवा बहुत गर्म है, जिन्हों कहने लू चल रही है, दर्जा हरारत 50-52 तो भी अगे चला गया, तो इन संस्कृत दे कहने ने वाता अनुकूल, हवा नु अपने अनुकूल करना। जिस तरह की हवा मैनू चाहिए, मैं इसनु अपने अनुकूल करना। पानी का स्वभाव तो है निवाण की तरफ चलना, पर मैं रहिंदा 8वीं मंजिल ते 10वीं मंजिल ते, मैनू उपर चाहिदा पानी। तो हुण मैं पानी दी धारा नू अपने अनुकूल करना है, बावे वगदी है निवाण दी तरफ, मैनू वगाना है चढ़ाई दी तरफ। बाहर दा ज्ञान, पदार्थ दा ज्ञान, पदार्थ नू अपने अनुकूल करना। जो मेरे अनुकूल नहीं है, वो मैनु सुख नहीं दे सकता, उस तो मैं सुख नहीं ले सकता। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, एक किसान धरती नू अपने मन मर्जी दे अनुकूल करना चाहता है और करता है, जैसा बीज मैं बोना चाहना वो पैदा हो, जैसे फूल फल मैं उगाना चाहना वैसी हो गए। इसी तरीके नाल अगन है, अग इसने मनुख ने बहु प्रकार विच अपने अनुकूल कीती हुई है, अपने अनुकूल कीती हुई है, और अगन तो बहुत सारी अपनियां लोड़ां दी पूर्ति

लगाया है कि गुरु नानक का गावना ही योग बन गया, गुरु नानक का गावना ही तप बन गया, गुरु नानक का गावना ही भगती बन गया। पातशाह की बड़ी सुंदर पंक्ति भी है, योग बनया तेरा कीर्तन गाई। जो मैं तेरा कीर्तन गाया है बस यही योग है, यही भगती है, यही योग की साधना है, यही योग दियां विधियां ने। तो साहब कहने हे परिपूर्ण परमात्मा, मैं तेरे दर पे कुछ गीत लेके आया, कुछ संगीत लेके आया, तू सुन। ढहूं ढाडी हर गुण गावदा जे हर प्रभ भावे, प्रभ मेरा थिर थावरी होर आवे जावे। सवाल ये पैदा होंदा है कि तू परमात्मा दे दर देते गीत संगीत लेके क्यों आया है, किसी होर दे दर ते जा। साहब कहन होर किथे मैं लेके जावा, परमात्मा ते थिर है, नैचल है, बाकी ते सब चलायमान है, मैं किथे गावा। शेख शरफ सूफी फकीर ने गुरु नानक देव जी महाराज ते सवाल कीता सी, शुमा मुकाम कुजा अस्त, थोड़ा मुकाम किथे है, तुसी किथे रहिंदे हो, थोड़ा घर किथे है, शुमा मुकाम कुजा अस्त, थोड़ा घर किथे है, थोड़ा टिकाणा किथे है। उस वक्त मेरे पातशाह ने एक अगम्य शब्द उच्चारण किया है, श्री राग विच दर्ज है। साहब कहंदे ने मुकाम कर घर बैसना निच नित चलने की धोक, मुकाम कहां पर जानिए जहां रहे नैचल लोक, दुनिया कैस मुकामे कर सिदक करने खर्च बांधो लाग रहो नामे। ऐ शेख शरफ किथे मुकाम बनाइए, सब कुछ ते चलायमान है, मैं किथे घर बनावा। दिन रव चले निस सस चले, तार का लख पलोए, मुकाम ओही एक है नानका सच बगोए। साहब कहन जमीन चल रही है, सूरज चल रहा है, चंद्रमा चल रहा है, ग्रह नक्षत्र चल रहे ने, सब कुछ चलायमान है, मैं अपना मुकाम बनावा ते किथे बनावा। सब कुछ चल रहा है, रुकया हुआ कुछ भी नहीं, रुकण दा ना ही मौत है। शरीर विच श्वास चल रहे ने, मन विच विचार चल रहे ने, जमीन चल रही है, आसमान चल रहा है, ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं, वगदी हुई पवन चल रही है, दरियावां दा जल चल रहा है। साहब कहंदे ने सब कुछ ते चल रहा है, रुकया हुआ ते कुछ भी नहीं, ते जद रुकया हुआ कुछ भी नहीं तो मैं किथे मुकाम बनावा। पर गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने ये जो सब कुछ चल रहा है किसे रुके हुए आधार ते चल रहा है, नहीं चल परमात्मा है, बाकी सब कुछ चल रहा है, वो केवल टिकया हुआ है, ओ नेचल है। तो साहब कहंदे मैं मकाम किथे बनावा, सब कुछ ते चल रहा है, सब कुछ चलायमान है। शेख शरफ ने कुछ होर भी सवाल किए सन गुरु नानक दे, फकीरी चीज ऐ गुरु नानक दस सकदे फकीर किसनू कहंदे ने, संत किसनू कहंदे ने, फकीरी की है। तो साहबा ने बड़ा सुंदर जवाब दिता, जन्म साखी विच दर्ज है, इब्तिदाए फकीरी फना अस्त, इंतहाए फकीरी बकास्त, किसी उच्चे आदर्श लई अपने आप नू मिटा देना और हमेशा दे लई अमर हो जाना, बस यही फकीरी दी निशानियां ने, यही संत दियां निशानियां ने। उदे जीवन दा निशाना कोई बहुत उच्चा होवे और उस उच्चे निशाने लई अपने आप नू कुर्बान कर देना, हमेशा लई अमर हो जाना, बस यही फकीर दियां सिफतां ने। इस तो इलावा होर कोई फकीर दियां सिफतां ने। साहिबा ने ऐसे गहरे रूप विच कीर्तन कीता है, इतने गहरे तल तो संगीत कढ़िया है कि आपका गावना योग बन गया, आपका गावना तप बन गया, आपका गावना ही भगती बन गया। इस वास्ते आप दे घर गुरुद्वारियां विच अज भी कीर्तन प्रधान है, अज भी गावना प्रधान है, गा के गुरु नाल जुड़ना है, गा के अकाल पुरख दे नाल जुड़ना है। रोंदा होया ते बच्चा भी नहीं चंगा लगता, रोंदा होया वड्डा मनुख किस तरह चंगा लगेगा, नहीं, उस दे दर ते जाना है, गाउंदे होए जाना है, संगीत दियां धुना अलापदे होए जाना है, ता ही परमात्मा दी गलवकड़ी नसीब हो सकेगी। तो साहिब कहंदे ने हे अकाल पुरख, मैं ढाडी दी तरह कवि दी तरह तेरे दर ते आया, हुण ढाडी हर गुण गावदा जे हर प्रभ भावे, प्रभ मेरा थिर थावरी होर आवे जावे। सो मंगा दान गुसाइया जित भुख लै जावे, हे गुसाई हे संसार दे मालिक, मेरी झोली विच ओ सौगात पा जिदे मिलदे आई सारियां ही भुखां दा अंत हो जाए, क्योंकि भुख है जिथे
ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਭੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਕੱਠੇ।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: ओए जो दिस है अंबर तारे किन ओए चीते चीतन हारे।

0: प्रेम लिबलाई ओहा प्रेम प्री कनक मान गज मोतियां लाल नै ना नहीं राज ना भाग ना हुक्म ना साधन किच किच ना चही ओनू चाहिदा कि चरणन शरणन संतन बंदन सुखो सुख पाही कहन लगे नानक तपत हरी मिले प्रेम प्री एवे प्रेमा भगती मेनू तेरे चरणा दी शरण चाही दिखे नानक नाम निरंजन जान्यो किन्नी भगत प्रेम लिबलाई भगती प्रेमा ला लिब ला के कीती ते मेरे सच्चे पातशाह ने फिर बाणी विच कहा रे मन ऐसी खरशो प्रीत कर जैसी चात्रक में सार भर थल हरी आवले पर प्रेमा भगती करन वाला बूंद नू एक बूंद ना पव ही के जितने मर्जी पानी दे भंडार होन पर चात्रक दी प्यास केवल स्वांती बूंद ही बुझाए। साहब ने पहला प्रमाण कमल फूल दा दिता, दूसरा कृपालू दाता जी ने मच्छी दा दिता, तीसरा प्रमाण सच्चे पातशाह ने मेर कीती चात्रक दा दिता, ते चौथा प्रमाण दिता प्रेमा भगती है की प्रेमा भगती कीती। ते गुरु नानक साहब दे अमृत बचन असीं पढ़ने प्यारो प्रेमा भगती है कि अपनी ता एक जबान भी टेक के गुरु गुरु नहीं जपदी। जे किते टिकन दा यतन करिए पांच सात मिनटां भी थक जांदी है। टेक के बंदे तो रब रब क्या ही नहीं जांदा। सारा दिन आदमी तो गल्लां करानियां होण, निंदिया करनी होवे। मैं कई बारी अर्ज करना बंदा बीमार होवे ना, हमदर्दी प्रगट करन जाइए ते ओ बड़ा ऐसता ऐसता बोलेगा, घर दे भी कहणगे बुलायो ना, डॉक्टर साहब ने रोकिया है वरजिया है इना बोलना नहीं। आम गल्लां करदियां ऐसता ऐसता बोलेगा, किते थोड़ा जिहा निंदिया दी कोई तवा लगण दा देर है, सच जाणियो पता नहीं कित्थों आवाज निकलदी ओही बंदा उच्ची उच्ची बोलन लग पैंदा है। की कदी साडी जबान परमात्मा नहीं इन्ना उच्चा बोलदी है? रसना संसार लई कूकेगी, रब लई कदी नहीं कूकदी। हां जिदी कूकन लग पै प्रेमा भगती विच, बाबा नानक जी कहने फिर ओदी एक जबान ही केवल नहीं कूकदी, सिर तो पैरा तक जितने ओदे रोम ने हर रोम ही जबान बन के कूकन लग पैंदा। एवे प्रेमा भगती। बाबा जी ने अमृत बाणी विच एक बचन कहा है, जे वेह गुरु अर्जुन साहब श्लोक संस्कृति, हे रस गए मधुर प्रै तोयंग, हे जबान हे रसां नू चखण वालिए, तेनू गल्लां चंगियां लगदियां ने, तेनू भोजन प्रसाद पानी चंगे लगदे ने, हे जेवे हे रस गए मधुर प्रै तोयंग सत हतंग, जदों किते सत नाम वाहगुरु दी गल चले इंज लगदा जिवें तेरी मौत हो गई है, तू मूंह च है ही नहीं, अंज लगदा जिवें तेरी अंदर दी ताकत ही खत्म हो गई। हे जेवे हे रस गे मदर प्रै तोयंग सत हतंग, सत विच तेरी मौत हो गई। परम बादंग, जे परम बादर ते वड्डे तो वड्डा झगड़ा खड़ा करना होवे ते जबान तीली नूं तां कसाणा पैंदा है तां ओह अग लांदी ए, सिर्फ तूं तां अपनी एक निक्की जी तीसी खलाण दी दे रे ते कई पुश्तां दे आपस विच पवाड़े पा के रख देनी है। ध्यान दिया जे जे जबान दी शक्ति, जे रसना दी ताकत, जे जेवा दी ताकत एक थोड़ी जी तीसी खलाए ते कई जन्मां दे पवाड़े कई पुश्तां दी आपस विच कतलो गारत तक गल पहुंच जांदी ए, जे जबान इन्नी वड्डी दूरी भी पा सकदी ए। चेते रखियो इहदे कोल शक्ति ए, जे रब रब जपन लग पए ते करोड़ां जन्मां दी दूरी मिटा भी सकदी है। कली दूरी पांदी नहीं, ये दूरी मिटा भी सकती है। हजूर ने बाणी विच मेहर कीती जदों उन्होंने प्रेमा भगती भी जुड़े, ते बाबा नानक जी नूं जे कोई पुछदा है कि सतगुरु जी परमात्मा नूं पाउण दा मार्ग की है, ते सच्चे पातशाह कहिंदे ने इह मार्ग है इक दू जीबो लख हो है किन्नी भगत प्रेम लिबलाई, इन्नी भगती कीती एक जबान तो लख जीब हो गई, लख दीब तो भी लख हो गई, ते उस भी लख जीव विचों एक एक जीव ना लख लख वरी जगत दे मालक दा नाम जपया, ते बाबा नानक जी कहिंदे इन्नी कमाई करे ता जगत दे मालक भी तू मिल सकदा, कि इहो जी प्रेमा भगती को कर सकेगा? बाबे नानक जी दा अपना अनुभव है, इक दू जीबो लख हो है लख होवे लखवीस। लख लख गेड़ा आखियां एक नाम जगदीश प्यारिया ए तरह पत पवड़िया चढ़िया होए आकीस एने रस्ता ए ही मार्ग प्यारे नु पाउण दा ते जे अंदर तेरा रुख है ते बाहर प्रेमा भगती वाले दी रीछ करने फिर सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाई है। प्रेमा भगती ओदी नजर नाल मिलदी है ओदी बख्शीश नाल मिलदी है। कूड़ा कूड़ी ठीस ठीस दा अखरी अर्थ हुंदा गप मारना कहिंदे जे ओदी नजर नाल तेरे कोल प्रेमा भगती नहीं एवें जमीन ते रेंगण वाले कीड़े तू आसमान विच उड़न वाले पंछियां दी रीस ना कर। सुन गल्ला आकाश की कीता आई रीस ओ ता प्रेमा भगती आ जिहड़ी अवस्था तैनु दसी एक दू जीवो लख होए ए नानक नदरी पाई है ओदी कृपा नाल मिलदी है। ते जे कृपा तो बिना कूड़ा कूड़ी ठीस कूड़े बंदे दी कूड़ी गप होवेगी कूड़े बंदे दा कूड़ होवेगा। मैं बेनती जिहड़ी कर लगा सतगुरु ने प्रेमा भगती कीती उस भगती दी एक मिसाल हजूर ने खोर दिती। दातार कहिंदे ने कि दुध नूं चो के लियांदे ने जिमीदार चोंदा ग्वाले घरां विच चोंदे ने जिस बर्तन विच दुध चो के लियांदा उस बर्तन विचो दुध दूजे बर्तन विच पलटिया जांदा है भांडे विच पलटदे ने। हुण जिस भांडे विच दुध चोया ओदे अंदर दुध ओदे बर्तन दे नाल ओदे कंडियां नाल जरूर लगा है ते सियाणियां सवाणियां अपने हथ विच लै के पानी ते उस बर्तन दे विच बाल्टी विच भांडे विच छत्ते मार के उस दे अंदर लगे हुए दुध नूं उतार दियां सन ते उस पानी नूं कहा जांदा सी दुध विच हंगाल पा दिता है। यह बड़ा पुरातन शब्द है तुहाडा सभ्याचार दा। कहिंदियां सन दुध विच हंगाल पाया है जदों हंगाल दुध विच पा दिता हंगाल दर जी ओ दुध नाल मिलिया होया पानी हंगाल पा दिता दुध विच ते दुध नूं परत के उन्हां ने चुल्हे ते रखिया। प्रेमा भगती की है बाबा नानक जी ने कला रब नूं वाहगुरु वाहगुरु जबान नाल कहण नाल नहीं प्यारियो उस प्रेमा भगती विच अपना सब कुछ ही कुर्बान किया जाता है अपना सब कुछ फिदा किया। हुण उस दुध नूं जिहड़ा हंगाल वाला सी चुल्हे दे उत्ते रखिया अग दी लाट निकली अग दे नाल पहला उस विच मिलिया होया जिहड़ा हंगाल पानी सी ओह पाप बन के उड्डन लगा। जदों पानी पाप बन के उड्डिया ते आखिर बाबा जी दे समझाण दा तरीका कि प्रेमा भगती की है कहिंदे ने असी उस पानी नूं पुछ लिया कि देख दुध तां कीमती सी तू तां अपनी खुश किस्मती समझ कि पानी दे छत्ता सै तू ते तेनू दुध विच मिलदिया सार दुध ने देख अपने विच थां दित्ती इत्थे कोई थां दिंदा एक दूजे नूं कहन लगे पानी तेनू तेल विच मिलाया जाए कदी तेल तेनू थां देगा तेनू घ्यो दे मक्खण विच मिलाया जाए कदी मक्खण तेनू थां देगा कदी घ्यो तेनू थां देगा दूजे तरल पदार्थ कदी तेनू थां देणगे देख तू दुध दा अंदर किन्ना कु खुल दिला है ओ तेनू आए नूं उहने अपने विच थां दे दित्ती थां ना केवल दित्ती उहने कहा ठीक तेरा रूप मेरे तो वखरा है जे मेरे कोल आ गया मैं तेनू अपना रूप देना वा। पानी नूं दुध ने अपना रूप दिता कला रूप ही नहीं पानी इकले दी कीमत नहीं सी पर जदों दुध विच मिलिया दुध ने कहा जे मैं 5 लीटर दी मेरी मपाई है ते तू 1 लीटर है ते आपा हो गए 6 किलो 6 लीटर हो गए चेते रखी मैं अपना मुल थोड़ा जा कटवा लांगा पर तेरी कीमत नाल जरूर पवांगा ते पैंदी है दुध दी नाल पानी दी कीमत पै गई। ते बाबा जी कहन लगे ओ बेवफा देख थां दिता जिन्ने नाम अपना तेनू दिता दुध पानी ना रहन दिता तेनू अपना रूप दिता अपनी कीमत घटा के उन्हें तेरी नाल कीमत पवा ली ते इना बेवफा है कि सेक लगन दी देर तू पहला उड गए। हजूर कहिंदे ने उस पानी दा उत्तर सी बाणी दे बचन ने कहिंदा इसे करके तां उड्डिया वा कि जिन्हें मैनु रूप दिता रंग दिता कीमत पाई मेरा चित करदा मैं इनू सेक लगन तो पहला पहला अपने आप नू क्यों ना साड़ देवा क्योंकि मैं अपने प्यारे दा सेक नहीं सेक सकता, मैं अपने आप नूं कुर्बान कर सकना। ए वे प्रेमा भगती, नानक नाम निरंजन जान्यो किन्नी भगत प्रेम लिव लाई। ते प्रेम लिव ला के भगती करके सानू क्या रे मन ऐसी खरशों प्रीत कर, कैसी जैसी जल दुध होए, जिमें दुध दी ते पानी दी प्रीत है। ते फिर देखो इथे आके मुकम्मल प्रीत बनती है, जिमें मैं उदाहरण पहला दित्तियां ने। जे हुण मैं ये कही जा कमल दा फुल खिड़िया ते पतंगा ओदे ते आ गया, ते आप कहोगे वेखो बंदा किहो जी गल करदा है, कमल दे फुल ते भवरे हुंदे ने, पतंगे ता दीवे ते जांदे। जे मैं कहां जी दीवा बलिया ते कीड़ियां आ गईयां, तुसी कहोगे मूर्खता ही वाली गल, दीवे ते कीड़ियां, कीड़ियां ता मिठे ते जाणगियां। हुण शब्द सुरत कीनी वरखाई, ताते अंगद अंग संग भयो शायर, ओ समुंदर बने ते समुंदर दे वेच नियां नहीं रखियां जांदियां, समुंदर लोकां दे घर नहीं बनांदा, समुंदर अपने विचों बदल पैदा करके केवल बरसात ही करदा है। ताते अंगद अंग संग भयो शायर, समुंदर बन गए ते निशब्द सुरत कीनी वरखाई। उस गुरु अंगद साहब ने इन्नी कृपा कीती, उन्होंने शब्द ते सुरत दी वरखा कर दिती। आओ एदी प्रोड़ता गुरु ग्रंथ साहब करनगे। कहन लगे लंगर चल है गुर शब्द हार, तोट ना आवी खती है। जेड़ी खती बाबा नानक खट के गए ने ना, ओदा तोटा नहीं आना। इस तो पहली एक बचन है नीव किने रखी, नानक राज चलाया सच कोट सतानी नीव दे। बाबे नानक ने नीव रखी। हुण अगे ए स्पष्ट होवेगा कि गुरु नानक साहब झड़ी लांदे पए ने गुरु अंगद साहब के नहीं रख रहे ने। बचन है लंगर चला गुर शब्द हर, तोट ना आवी खटिए, खर्चा दित कसम दी, कसम दी दर ते बाबे नानक दी रब दी दिते हुए खर्चे नू गुरु नानक साहब दी जोत गुरु अंगद साहब वंडन लगे ने। खर्चे दित कसम दी आप खैदी खैर दबतीए। हुण देखो शब्द ने खर्चे, खर्चन वास्ते दिता बाबे नानक ने खजाना, नाल कह दिता आप खैदी आप खाया जे, खैर खैर दर ते जेड़े मंगण आउणगे उन्हां दी झोली विच पाया जे। हजूर ने कहा कि लंगर चला गुरु शब्द हर, तोट ना आवी खटिए, खर्चा दित कसम दी आप खैदी खैर दबतीए। इत एक बचन कीता कहन लगे मेरे दाता जी के आप जी उते एनी कृपा भी हुंदी, होवे सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों झटिए। नूर दी वरखा हो रही है, गुरु अंगद साहब उसे वरखा नू लोकां तक पहुंचा रहे ने क्योंकि गुरु नानक साहब ने उन्हूं अपना अंग बनाया है। होवे सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों झटिए, तुद जिथे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए। एक बचन आप रोज होर पढ़ दियो, बरे है दरगह गुरु की कुदरती नूर। हुण बरे है, बरे है नहीं बरे है, बरे है दर से बर रहा है, वरख रहा है, की वरखदा है कुदरती नूर। परमात्मा दे घर विचो रुखानियत दे बदल बन के गुरु अंगद साहब उन्हां दी बरसात पै करांदे ने, ते जेड़ा आउंदा उन्हूं नाम नाल भे दिंदे। ताते अंगद अंग संग भयो शायर, तिन शब्द सुरत कीनी वरखाई। ते गुरु नानक साहब ने की कीता, इनू भाई गुरदास जी ने अपनी रचना विच कह कहन लगे प्यारियो के गुरु नानक साहब ने मेहर कीती, पारस होवा पारसों गुर उपदेश गुर परचे, गुर उपदेश विच रहना है, चंदन होवा चंदनों है, दीपक ते दीपक प्रगाश्या है। हुण धन गुरु अंगद साहब शब्द सुर दी खेद नहीं वरतांदे, कैसी वरखा पै करदे ने। भाई पारो वर्गा आउंदा ते ओ जदो आके पुछदा महाराज हंस और परम हंस की है, ते बाबा नानक जी दी जोत गुरु अंगद साहब वरखा करके कहंदे ने के पारो ते भाई पारो जुलका सी। पारो हंस हुंदे ने जेड़े दुध पानी नखेड़दे ने, ते परम हंस हुंदे ने जिउंदे जिउंदे जी अपने शरीर विचों बदेह हो जांदे ने। ते तुर पिया कहंदा फिर परम हंस असी ते नहीं बनना, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਰਮਹੰਸ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਪਰਮਹੰਸ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਲੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੋਧ ਰਸੋਈਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਬਚਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋਧ ਰਸੋਈਆ ਦੇਵਤਾ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦੁੱਤਰ ਤਾਰੀ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੈ ਸਵਾਰੀ। ਜੋਧ ਰਸੋਈਆ ਦੇਵਤਾ ਇਹ ਅਸਲ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਇਸ ਭਾਈ ਜੋਧ ਨੇ ਇੰਨੀ ਲੰਗਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨਾਲ ਦੋ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਕਿਦਾਰਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੋਧ। ਇਹ ਜੋਧ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਇਹ ਜੋਧ ਖਹਿਰਾ ਜੱਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਜੋਧ ਸਨ। ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪੌੜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗਏ, ਉਹ ਖਹਿਰਾ ਸੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੋਧ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਲੰਗਰ ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭਾਈ ਜੋਧ ਤੇ ਭਾਈ ਕਿਦਾਰਾ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੀ ਖੂਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਵਾਂ। ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਮਣਾ ਜੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਵੀ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਖੌਂਚੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ, ਲੱਕੜਾਂ ਪਾੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧੁੱਪੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੈਲ ਨਾ ਗਈ ਤੇ ਮੈਲ ਜਾਏਗੀ ਕਿੱਥੋਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਜੇ ਵੀ ਖੌਮੇ ਦੀ ਮੈਲ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨਾ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖੱਕ ਨੀ ਸੁੱਚਾ ਭੋਜਨ ਛਕੇ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਭੂਤ ਵੜਿਆ ਇਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਚੁੱਕਣੇ ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਪਤਲਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀਆਂ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਤਕਥਨੀ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤਲਾਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਚੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦੇਖਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਲੰਗਰ ਕਿੱਥੋਂ ਛਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਤਲਾਂ ਹੂੰਜ ਕੇ ਆ ਪਿਆ ਖਾਏ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਪਰ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਨਚੇਤ ਆਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਚਮਤਕਾਰ। ਆਏ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੱਜਣ ਪੱਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿੜਕੇ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਕੰਬ ਗਏ, ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾਤਾ ਅੰਦਰ ਜੂਠਾ ਤੇ ਜੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜੂਠਾ ਹੀ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜੂਠਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅੰਦਰ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਭੂਤ ਬੈਠਾ, ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੈਂ ਉੱਚਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਨੀਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੱਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤਰੁੱਟ ਪਏ, ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਤੂੰ ਸਚਿਆਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਚਿਆਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਨੋ ਵਰਖਾ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋਧ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋਧ ਰਸੋਈਆ ਦੇਵਤਾ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦੁੱਤਰ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਤੋਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੈ ਸਵਾਰੀ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ, ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ? ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਝੂਠ ਵਾਲਾ ਭੂਤ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਚੌਂਕੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੱਚਾ ਭੋਜਨ ਹੀ ਦੇਈਦਾ। ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਭਇਓ ਸਾਇਰ, ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕੀਨੀ ਵਰਖਾਈ। ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅਕਤ ਕਥਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਥਾ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਤ ਕਥਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅਕਤ ਕਥਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਕਤ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਜੀਹ, ਸਾਡੀ ਜੀਵ ਇੱਕ ਹੈ, ਕੱਛ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਅਕਥ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੱਟ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕੰਨ ਖਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋ ਰੁਮਾਵਲ ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਣਨ।
1: ਯੂ ਆਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ KRPI 1550 ਰੇਡੀਓ ਫਰਨਡੇਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ।
2: ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਗੱਜ ਕੇ ਸਾਥ। ਜਹਾਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ, ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਹਾਜ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਡੁੱਬ ਸਕਦੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਹਿਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਵੱਡਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ, ਲੱਖਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣ, ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਡੁੱਬ ਜਾਣ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਜਹਾਜ਼, ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਫਰਕ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂਗੂ।
3: ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
2: ਅਗਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਤਰਾ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਗਿਣਤੀ ਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਹੋਊਗੀ? 800 ਹੈ ਕਿ 900 ਹੈ ਕਿ 70,000 ਹੈ ਕਿ? ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਗਿਣਤੀ ਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂਗੂ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

0: शाबाश।
1: कोट अपराधी तरिया रे गुरु नानक जिन सुने आपे खिया से फिर गरबास न परिया रे।
2: हर तरह का स्रोता लाइव सुन रहे, हर तरह का स्रोता इथे बैठा प्रेम वाला भी दूजा भी। जदों आ बाणी दे प्रमाण बच्चे देंदे वीर देंदे ने ते अंदरों सवालां दी गुंजाइश खत्म हो जांदी है वी गुरु नानक दी बाणी कह रही है गुरु नानक जिन सुनिया देखिया ओ सुनिया देखिया बोलो सुनिया
0: देखिया
2: से फिर गरबास ना भरिया रे। गज के आखो सतना
3: जिनको कृपा करी जग जीवन।
2: ये प्रमाण बाणी जो काम दे धारना भारू ना रवे भारू बाणी रवे।
3: जिनको कृपा करी जग जीवन हर उर धारे हो।

0: listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाति पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन कि जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है, जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन, इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा बैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तां मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी, एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

0: ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਟੂਟੀ ਗਾਂਢ ਨਹਾਰ ਗੋਪਾਲ
0: ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਆਪੇ ਪਤਪਾਲ
1: ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਹੀ
0: ਇਸਦੇ ਵਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀ
1: ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰ ਜਾਪ
0: ਅਵਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਪ
1: ਆਪਨ ਕੀ ਆ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ
0: ਜਿਸੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲੋਚੈ ਕੋਈ
1: ਜਿਸ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਤੇਰੇ ਕਿਛ ਕਾਮ
0: ਬਤ ਨਾਨਕ ਜਾਪੇ ਹਰ ਨਾਮ
1: ਰੂਪਵੰਤ ਹੋਏ ਨਾਹੀ ਮੋਹੈ
0: ਰੱਬ ਕੀ ਜੋਤ ਸਗਲ ਘਟ ਸੋ ਹੈ
1: ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਿਆ ਕੋ ਗੁਰ ਪੈ
0: ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਿਸਕਾ ਦੀ ਆਦਰ ਪੈ
1: ਹੱਥ ਸੂਰਾ ਜੇ ਕੋ ਕਹਾਵੈ
0: ਰੱਬ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹਿਤਾਵੈ
1: ਜੇ ਕੋ ਹੋਏ ਵਹਿ ਦਾ ਤਾਰ
0: ਜਿਸ ਦੇਨ ਹਾਰ ਜਾਂ ਨੈਗਾ ਵਾਰ
1: ਜਿਸ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਟੂਟੈ ਹਉ ਰੋਗ
0: ਨਾਨਕ ਸੋਜਨ ਸਦਾਇਆ ਰੋਗ
1: ਜਿਉ ਮੰਦਿਰ ਕੋ ਥੰਮੈ ਥੰਮਨ
0: ਜਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਅਸਥੰਮਨ
1: ਜਿਉ ਪਾਖਾਨ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਤਰੈ
0: ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਰਖਤ ਨਿਸਤਰੈ
1: ਜਿਉ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸ
0: ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਮਨ ਹੋਏ ਵਿਗਾਸ
1: ਜਿਉ ਮਹਾ ਉਦਿਆਨ ਮਹਿ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ
0: ਜਿਉ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ
1: ਜਿਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਂਛੋ ਧੂਰ
0: ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰ
1: ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਬਿਲ ਲਾਈਐ
0: ਗੁਰ ਬਿਲਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ
1: ਦੁਖ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵ ਨਹਾਰ
0: ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਤੂਤ ਸਹਿਜ ਤਾਰ
1: ਜੋ ਕਛ ਕਰੈ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮਾਨ
0: ਲਾ ਕਾਹੇ ਫਿਰੇ ਅਜਾਨ
1: ਕੌਣ ਬਸਤੇ ਆਈ ਤੇਰੇ ਸੰਗ
0: ਡਾਕਟਰ ਰਹੋ ਰਸ ਲੋਭੀ ਪਤੰਗ
1: ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਬ ਹਿਰਦੇ ਮਾਹੀ
0: ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇ ਤੀ ਕਰ ਜਾਹੇ
1: ਜਿਸ ਵਕਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ
0: ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਕਰ ਪਾਇਆ
1: ਸਾਜਿ ਭਮਾਨ ਲਿਹੋ ਮਨ ਮੋਲ
0: ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਤੋਲ
1: ਲਾਦ ਖੇਪ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਚਾਲ
0: ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਬਿਖਿਆ ਜੰਜਾਲ
1: ਧਨ ਧਨ ਕਹੈ ਸਭ ਕੋਈ
0: ਮੁਖੋ ਜਲ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਸੋਏ
1: ਇਹੋ ਵਾਪਾਰ ਬਿਰਲਾ ਵਾਪਾਰ ਹੈ
0: ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਸਤਿਗੁਰ ਹਾਰ
1: ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ
0: ਹਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਧੂਰ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ
0: ਸਾਧ ਉਪਰ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਨ
1: ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਟਭਾਗੀ ਪਾਈਐ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ
1: ਮਨਕ ਬਿਗਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰੱਖੈ
0: ਹਰ ਕੁਨ ਗਾਈਐ ਮਨ ਤਰਸ ਚੱਖੈ
1: ਓਟ ਗਈ ਸੰਤਾਂ ਦਰ ਆਇਆ
0: ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਾਇਆ
1: ਮਿਤਕ ਕੋ ਜੀ ਵਾਲ ਨਹਾਰ
0: ਭੁਖੇ ਕੋ ਦੇ ਬਤੇ ਆਧਾਰ
1: ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਹੀ
0: ਗੁਰ ਬਿਲਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ ਪਾਏ
1: ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸ ਕਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜੋਗ
0: ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਸਰ ਹਵਾ ਨ ਹੋਗ
1: ਜਪ ਜਾਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ
0: ਸਭ ਤੇ ਉਚ ਨਿਰਮਲ ਇਹ ਕਰਨੀ
1: ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੋ ਨਾਮ ਦੀਆ
0: ਨਾਨਕ ਸੋਜਨ ਨਿਰਮਲ ਥੀਆ
1: ਜਾਂ ਕਹਿ ਮਨ ਕੋ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ
0: ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਵੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ
1: ਭਗਤ ਭਗਤ ਸੁਣੀਆਂ ਤਿਹ ਲੋਏ
0: ਜਾਂ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਇਕੋ ਹੋਏ
1: ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸਖਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿਤ
0: ਸੱਚ ਹਿਰਦੈ ਸਤਮੁਖ ਕਹਿਤ
1: ਸਾਚੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਚਾ ਆਕਾਰ
0: ਸੱਚ ਪਰ ਤੈਸਾ ਚਾਪਾ ਸਾਰ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਤਾ
0: ਨਾਨਕ ਸੋਜਨ ਸੱਚ ਸਮਾਤਾ ਸਲੋਕ
1: ਰੂਪ ਨਰੇਖ ਨਰੰਗ ਕਿਛ ਤ੍ਰਿਹ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ
0: ਸਭ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਹੋਵੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਅਵਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਮਹਿ ਰਾਖ
0: ਮਾਨੁ ਕੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਤਿਆਗ
1: ਇਸੇ ਪਰੈ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਹੋਏ
0: ਸਭ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ
1: ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਆਪੇ ਦਾਨਾ
0: ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਗਹੀਰ ਸੁਜਾਨਾ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੋਬਿੰਦ
0: ਕਿਰਪਾ ਧਿਆਨ ਦਿਆਲ ਬਖਸ਼ੰਦ
1: ਸਾਧ ਤੇਰੇ ਕੀ ਚਰਨੀ ਪਾਉ
0: ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਨ ਇਹ ਨਰਾਉ
1: ਮਨਸਾ ਪੂਰ ਸਰਨਾਂ ਜੋਗ
0: ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋ
1: ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾਂ ਕਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰ
0: ਇਸਕਾ ਮੰਤਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਹੋਰ
1: ਖੰਡ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਸਦ ਜਾਂ ਕੈ
0: ਸਰਵ ਥੋਕ ਸੁਣਿਆ ਕਰਤਾ ਕੈ
1: ਰਾਜ ਮਹਿ ਰਾਜ ਜੋਗ ਮਹਿ ਜੋਗੀ
0: ਤਪ ਮਤ ਪੀਸਰ ਕ੍ਰਿਸਤ ਮੈਂ ਭੋਗੀ
1: ਧਿਆਈ ਧਿਆਈ ਭਗਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਇਆ
0: ਨਾਨਕ ਦਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਕਿਨੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ
1: ਜਾਂ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀਮਤ ਨਾਹੀ
0: ਸਗਲ ਦੇਵ ਹਾਰੇ ਅਵਗਾਹੇ
1: ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣੈ ਪੂਤ
0: ਸਗਲ ਪਰੋਹੀ ਆਪਣੇ ਸੂਤ
1: ਸੁਮਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜਿਨ ਦੇ
0: ਜਨਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਸੇ
1: ਦੇਹ ਗੁਣ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕੋ ਪਰਮਾਈ
0: ਜਨਮ ਮਰੈਫਰੇ ਆਵੈ ਜਾਏ
1: ਊਚ ਨੀਚ ਤਿਸ ਕੇ ਅਸਥਾਨ
0: ਜੈਸਾ ਜਨਾਵੈ ਤੈਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਨ
1: ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਨਾਨਾ ਜਾਂ ਕੇ ਰੰਗ
0: ਨਾਨਾ ਪੇਖ ਕਰੇ ਇਕ ਰੰਗ
1: ਨਾਨਾ ਬਿਦ ਕਿਨੋ ਵਿਸਾਰ
0: ਰਬ ਬਨਾਸੀ ਇਕ ਅੰਕਾਰ
1: ਨਾਨਾ ਚਲਿਤ ਕਰੇ ਤਿਨ ਮਾਹੀ
0: ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਪੂਰਨ ਸਭ ਠਾਏ
1: ਨਾਨਾ ਬਿਦ ਕਰ ਬੰਤ ਬਨਾਈ
0: ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਈ
1: ਸਭ ਘਰ ਤਿਸਕੇ ਸਭ ਤਿਸਕੇ ਠਾਉ
0: ਜਬ ਜਬ ਜੀਵੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਮ
1: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ
0: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ
1: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ
0: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸੁਣ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ
1: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਗਾਸ ਪਤਾਲ
0: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਆਕਾਰ
1: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪੁਰੀਆਂ ਸਭ ਭਵਨ
0: ਨਾਮ ਕੇ ਸੰਗ ਉਧਰੇ ਸੁਣ ਸਰਵਣ
1: ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਾਏ
0: ਨਾਨਕ ਚੌਥੇ ਪਦ ਮੈਂ ਸੋ ਜਨਗਤ ਪਾਏ
1: ਰੂਪ ਸਤ ਜਾਂ ਕਾ ਸਤ ਅਸਥਾਨ
0: ਸਤ ਕੇ ਵਰ ਪ੍ਰਧਾਨ
1: ਕਰਤੂਤ ਸਤ ਸਤ ਜਾਂ ਕੀ ਬਾਣੀ
0: ਸਤ ਪੁਰਖ ਸਭ ਮਹਿ ਸਮਾਣੀ
1: ਸਤ ਕਰਮ ਜਾਂ ਕੀ ਰਚਨਾ ਸਤ
0: ਮੂਲ ਸਤ ਸਤ ਉਤਪਤ
1: ਸਤ ਕਰਣੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲੀ
0: ਜਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਤਿਸੈ ਸਭ ਭਲੀ
1: ਸਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ
0: ਵਿਸਵਾਸ ਸਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ
1: ਸਤ ਭਜਨ ਸਾਧੂ ਉਪਦੇਸ਼
0: ਸਤ ਤੇ ਜਨ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼
1: ਸਤ ਨਿਤ ਬੂਝੈ ਜੇ ਕੋਈ
0: ਨਾਮ ਜਬਰਤਾ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ
1: ਆਪ ਸਤ ਕੀ ਆ ਸਭ ਸਤ
0: ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੀ ਮਿਤ ਗਤ
1: ਜਿਸ ਕੀ ਸਿਫਤ ਸੋ ਕਰਨਾ ਹਾਰ
0: ਅਵਰ ਨਾ ਬੂਝ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ
1: ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੀਆ
0: ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਸੁਭਾਵ ਹੈ ਸੋ ਵਰਤੀਆ
1: ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਭਏ ਬਿਸਮਾਦ
0: ਜਿਨ ਬੂਝਿਆ ਤਿਸ ਆਇਆ ਸਵਾਦ
1: ਕਰਕੇ ਰੰਗ ਰਾਜ ਜਨ ਰਹੇ
0: ਗੁਰ ਕੈ ਵਚਨ ਪਦਾਰਥ ਲਹੇ
1: ਹੋਏ ਦਾਤੇ ਦੁੱਖ ਕਾਟ ਨ ਹਾਰ
0: ਜਾਕੇ ਸੰਗਤ ਰਹਿ ਸੰਸਾਰ
1: ਜਨ ਕਾ ਸੇਵ ਸੋ ਵਟ ਭਾਗੀ
0: ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ
1: ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀਰਤਨ ਜਨ ਗਾਵੇ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵੇ ਸਲੋਕ
1: ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ
0: ਪੇ ਸੱਚ नानक होसी पे सच अष्टपदी
1: चरण सत सत प्रसनहार
0: पूजा सत सत सेवदार
1: दर्शन सत सत पेकनहार
0: नाम सत सत त्यावनहार
1: आप सत सत सतधारी
0: आपे गुणकारी
1: शब्द सत सत प्रभक्ता
0: सुरत सत सत जस सुनता
1: भुजनहार को सत सब होए
0: नानक सत सत प्रभ सोए
1: सत स्वरूप हृदय जन मानिया
0: नानक रावण तिन मूल पछाने
1: जाकर हृदय विश्वास प्रभ आया
0: तत के अंत समान प्रगटाया
1: भय ते निरपो होए बसाना
0: जिसते उपजे ते समाहे समान
1: बस माही ले बस कटाई
0: ताको पिंड न कहना जाई
1: पूजय भूजनहार विवेक
0: नारायण मिले नानक एक
1: ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी
0: ठाकुर का सेवक सदा पुजारी
1: ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत
0: ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत
1: ठाकुर को सेवक जाने संग
0: आपका सेवक नाम कै रंग
1: सेवक को प्रभ पालनहारा
0: सेवक की रखे निरंकारा
1: सो सेवक जिस दया प्रभ धारै
0: नानक सो सेवक सास सास समारै
1: अपने जन का पर्दा ढकै
0: अपने सेवक की सर पर रखै
1: अपने दास को दे वडाई
0: अपने सेवक को नाम जपाई
1: अपने सेवक की आप पत रखै
0: ताकि कदमत कोई न लखै
1: प्रभ के सेवक को कोऊ न पहुंचै
0: प्रभ के सेवक ऊंचते ऊंचे
1: जो प्रभ अपनी सेवा लाया
0: नानक सो सेवक दया दिस प्रगटाया
1: नीकी कीरी मह कर रखै
0: भस्म करै लस्कर कोट लखै
1: जिसका शासन काटते आप
0: ताको राखत दे कर हाथ
1: मानस जतन करत बहु भांत
0: जिसके कर्तव्य प्रथे जात
1: मारै न रखै अवर न कोई
0: सर्व जिया का रखा सोए
1: काहे सोच कर हेरे प्राणी
0: जप नानक प्रभ लख बडाणी
1: बारंबार बार प्रभ जपी है
0: मते मन तन तरपी है
1: नाम रतन जन गुरमुख पाया
0: जिसके शेवर नाही दृष्टाया
1: नाम धन नामो रूप रंग
0: नामो सुखर नाम का संग
1: नाम रस जो जन तृप्ताने
0: मंतन नामे नाम समाने
1: ऊर्त बैठ सोभत नाम
0: कहो नानक जन कै सद काम
1: बोलो जस जेवा दिन रात
0: रब अपने जन कीनी दात
1: करे भक्त आत्म कह चाहे
0: रब अपने से रहे समाई
1: जो हो वाह हो वत सो जाने
0: रब अपने का हुक्म पछाने
1: इसकी महिमा कौन बखानो
0: इसका गुण कह एक न जानो
1: आठ पैर प्रभ से हजूरे
0: कहो नानक से जन पूरे
1: मर मेरे दिन की ओट ले
0: मंतन अपना तिन जन दे
1: जिन जने अपना प्रभु पछाता
0: सो जन सर्व थोक का दाता
1: किसकी शरण सर्व सुख पावे
0: इसके दर्श सब पाप मिटावे
1: अवर सियानक सगली छाट
0: जिस जन की तू सेवा लाग
1: आप न जान न हो भी तेरा
0: नानक तिस जन के पूजो सद पैरा
1: श्लोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम
0: जिसके संग सिखी उदर है नानक हर गुण गावे अष्टपदी
1: सतगुर सेव की करे प्रतपाल
0: सेव को गुर सदा दयाल
1: सिख की गुर दुरमत मल हिरै
0: गुर बचनी हर नाम उचरै
1: सतगुर सिख के बंधन काटै
0: गुर का सिख वकार ते हटै
1: सतगुर सिख को नाम धन दे
0: गुर का सिख वड भागी हे
1: सतगुर सिख का हलत पलत सवारै
0: नानक सतगुर सिख को जी नाल समारै
1: गुर के गृह सेवक जो रहै
0: गुर की आज्ञा मन में सहै
1: आप उसको कर कष न जनावै
0: हर हर नाम हृदय सद ध्यावै
1: मन बेचै सतगुर के पास
0: सेवक के कार्य रास
1: सेवा करत होए निकामी
0: जिसको होत प्राप्त स्वामी
1: अपनी कृपा जिस आप करे
0: नानक सो सेवक गुर की मतले
1: बेस विश्वे गुर का मन मानै
0: सो सेवक परमेश्वर की गत जानै
1: सो सतगुर जिस हृदय हरनाउ
0: अनक बार गुर को बल जाओ
1: सर्व निधान जी का दाता
0: आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता
1: ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म
0: एक आप नहीं कछ भरम
1: सह सियान पुलिया न जाइए
0: नानक ऐसा गुरबट भागी पाई है
1: सफल दर्शन देखत पुनीत
0: अष्ट चरणगत निर्मल रीत
1: भेट संग राम गुण रवे
0: पार ब्रह्म की दरगाह गवे
1: सुनकर भजन करन आगानी
0: मन संतोखा तंपति आने
1: पूरा गुर अखियो जा का मंत्र
0: अमृत दृष्टि पे कहे हुए संत
1: गुण बेअंत कीमत नहीं पाए
0: नानक जिस भावे तिस लए मिलाए
1: देवाए को सत अनेक
0: सतपुरख पूर्ण विवेक
1: काहू बोल न पहुंचत प्राणी
0: आत्मा गोचर प्रभ निर्वाणी
1: निराहार निर्वैर सुखदाई
0: ताकि कीमत किने न पाई
1: अनक भक्त बंधन नित करहे
0: चरण कमल हृदय सिमरै
1: सत बलहारी सतगुरु अपने
0: नानक जिस प्रसादा सा प्रभ जपने
1: यो हर रस पावे जन कोई
0: अमृत पीवे अमर सो होए
1: उस पुरख का नाही कदे विनाश
0: जाके मन प्रगटे गुण तास
1: आठ पैर हर का नाम ले
0: सच उपदेशे वको दे
1: वो माया के संग न लेप
0: मन में रखे हर हर एक
1: अंधकार दीपक प्रगासे
0: नानक भरम बहु दुख ते नासे
1: सत माही ठांड वरताई
0: अनंत भया दुख नाठे भाई
1: जन्म मरण के मिटे अंदेसे
0: साधु के पूर्ण उपदेशे
1: हो चुका निरपो होए बसै
0: सगल व्याध मन ते कह नसे
1: जिसका साधन कृपा धारी
0: सा संग जप नाम मुरारी
1: चित पाई चूके भ्रम गमन
0: नानक हर हर दस सरवण
1: निर्गुण आप सरगुण भी होही
0: कला धार जन सगली मोही
1: अपने चरित प्रभ आप नाए
0: अपनी कीमत आपे पाए
1: हर बिन दूजा नाही कोई
0: सब निरंतर एको सोए
1: ओत पोत रविया रूप रंग
0: भय प्रकाश साध का संग
1: राज रचना अपनी कल धारी
0: अनक बार नानक बलहारी
1: श्लोक साथ न चलै बिन भजन बिखिया सगली शार
0: हर हर नाम कमावना नानक हो तन सार अष्टपदी
1: संत जना मिल करो विचार,
0: एक सिमरन नाम आधार,
1: अवरो पाप स्वामी पसारो,
0: शरण कमल विद मैं उर धारो,
1: कर्म कान सो प्राप्त समर्थ,
0: दृढ़ कर गहो नाम हर वथ,
1: देव तन संजो हो भगवंत,
0: संत जना का निर्मल मंत,
1: एक आस रखो मन माही,
0: सर्व रोग नानक मिट जाहि,
1: जिस तन को चार पुंट उठता वे,
0: सो तन हर से वाते पावे,
1: जिस सुख को नित बांचे मीत,
0: सो सुख साधु संग प्रीत,
1: जिस शोभा को करहे भली करनी,
0: सासो बापर हर की सरनी,
1: अन को पावी रोग न जाए,
0: रोग मिटै हर अवखद लाए,
1: सर्व निधान मैं हर नाम निधान,
0: जप नानक दरगह प्रवान,
1: मन प्रबोधो हर कह नाई,
0: स्थापते बैठाए,
1: ताको बिघन न लागे कोई,
0: जाके हृदय बसै हर सोए,
1: कल ताती ठंडा हर नाओ,
0: सिमर सिमर सदा सुख पाओ,
1: और बिन सह पूर्ण होए आस,
0: भगत पाए आत्म प्रकाश,
1: हित कर जाए बसै अविनाशी,
0: तो नानक काटी जम फासी,
1: सत विचार कह जन साचा,
0: जन्म मरै सो काचो काचा,
1: आवागमन मिटै प्रभ सेव,
0: आप त्याग शरण गुरुदेव,
1: क्यों रत्न जन्म का होए उधार,
0: हर सिमर पुराने आधार,
1: अनको पाप न छूटन हारे,
0: सिमरत शास्त्र वेद विचारे,
1: हर की भगत करो मन लाए,
0: मन वंशित नानक फल पाए,
1: संग न चार स्थिर रह तना,
0: जाल पटावे मूर्ख मना,
1: सोत मीत कुटुंब हर बनेता,
0: इनते कहो तुम कवन सनाथा,
1: राज रंग माया विस्तार,
0: इनते कहो कवन छुटकार,
1: आस हस्ती रथ सवारी,
0: झूठा डंप झूठ पसारी,
1: जिन दिए तिस बुझे न बगाना,
0: नाम पसार नानक पछताना,
1: गुर की मातू लेह आने,
0: भक्त बिना बहु डूबे सियाने,
1: भक्ति भगत करो मन मीत,
0: निर्मल होए तमारो चीत,
1: चरण कमल रखो मन माही,
0: जन्म जन्म के किल बिख जाहे,
1: आप जपो अवरा नाम जपावो,
0: संत कहत रहत गत पावो,
1: सार भूत सत हर को नाओ,
0: सहस भय नानक गुण गाओ,
1: गुण गाव तेरी उतर समैल,
0: जनस जाय हो मैं बिख फैल,
1: ओहे अचिंत बसै सुख नाल,
0: सात ग्रासर नाम समाल,
1: छाड़ सियान सगली मना,
0: सात संग पावे सस्तना,
1: हर पूंजी संच करो व्यवहार,
0: हम सुख दरगह जयकार,
1: सर्व निरंतर एको देख,
0: कहो नानक जाके मस्तक लेख,
1: एको जप एको सलाहे,
0: एक समझ एको मन आहे,
1: एक सके गुण गाओ अनंत,
0: मंत्र जाप एक भगवंत,
1: एको एक एक हर आप,
0: पूर्ण पूरे प्रव्याप,
1: अंत विस्तार एक ते भय,
0: एक अराध प्रास्त गए,
1: मन तन अंतर एक प्रभ राता,
0: गुर प्रसाद नानक एक जाता, श्लोक
1: फिरत फिरत प्रभ आया, करया तो शरनाई,
0: नानक की प्रभ बेनती, अपनी भक्ति लाए, अष्टपदी
1: जाचक जन जाचे प्रभ दान,
0: कृपा देव हर नाम,
1: साध जना की मांगो धूर,
0: पार ब्रह्म शब्दा पूर,
1: सदा सदा प्रभ के गुण गावो,
0: सास सास प्रभ में ध्यावो,
1: चरण कमल से लागे प्रीत,
0: करो प्रभु की नित नीत,
1: एक कोट एक को आधार,
0: नानक मांगे नाम प्रभु सार,
1: प्रभ की दृष्ट महा सुख होए,
0: रस पावे बिरला कोई,
1: जिन चाख्या से जान तृप्ताने,
0: पूर्ण पुरख नहीं डोलाने,
1: सुपर परी प्रेम रस रंग,
0: उपजे चाहो साधक संग,
1: परी शरण आन सत्याग,
0: अंतर प्रकाश अंधन निवलाग,
1: बड भागी जपया प्रभु सोए,
0: नानक नावर ते सुख होए,
1: सेवक की मनसा पूरी भई,
0: सतगुरु दे निर्मल मत लई,
1: जान को प्रभु होए दयाल,
0: सेवक की नुसदा निहाल,
1: बंधन काट मुक्त जन भया,
0: जन्म मरण दुख भ्रम गया,
1: इच्छपुन्नी श्रद्धा सब पूरी,
0: रब रहया सत्संग हजूरी,
1: जिसका सा तिन लिया मिलाए,
0: नानक भक्ति नाम समाए,
1: सोक्यों बिसरे जे काल न भानै,
0: सोक्यों बिसरे जे किया जानै,
1: सोक्यों बिसरे जिन सब कुछ दिया,
0: सोक्यों बिसरे जे जीवन जिया,
1: सोक्यों बिसरे जे अग्न मह राखै,
0: गुर प्रसाद को बिरला लखै,
1: सोक्यों बिसरे जे बिख ते काटै,
0: जनम जनम का टूटा गंढ है,
1: गुर पूरै तत एह बुझाया,
0: रब अपना नानक जन ध्याया,
1: साजन संत करो एह काम,
0: आन त्याग जपो हर नाम,
1: सिमर सिमर सिमर सुख पावो,
0: आप जपो अवरै नाम जपावो,
1: भगत भाई तरिया संसार,
0: भगती तन होशी सार,
1: सर्व कल्याण सूप निध नाम,
0: मूढ़त जात पाए विश्राम,
1: सकल दुख का होवत नास,
0: नानक नाम जपो गुणतास,
1: उपजी प्रीत प्रेम रस जाओ,
0: मंत्र अंतर एही स्वाव,
1: नेत्रों देख दर सुख होए,
0: मन बिकसै साध चरण धोए,
1: भक्त जना कै मन तन रंग,
0: मिला को पावे संग,
1: एक बस दीजै कर माया,
0: प्रसाद नाम जप लिया,
1: ताकि उपमा कही न जाए,
0: नानक रहया सर्व समाए,
1: रब बख्शंत दीन दयाल,
0: भगत बछल सदा कृपाल,
1: नाथ नाथ गोविंद गोपाल,
0: सर्व घटा कृत प्रतपाल,
1: आदि पुरख कारण करतार,
0: भक्त जना के प्राण आधार,
1: जो जो जपै सो होई पुनीत,
0: भगत पाए लावे मन हीत,
1: हम निर्गुण यार नीच अजान,
0: नानक तुमरी शरण पुरख भगवान,
1: सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए,
0: एक निमक हर के गुण गाए,
1: अनक राज भोग बढ़ियाई,
0: हर के नाम की कथा मन पाई,
1: वो भोजन का प्रसंगीत,
0: रसना जपती हर हर नीत,
1: भली सो करनी शोभा धनवंत,
0: हृदय बसे पूर्ण गुरमंत,
1: साध संत प्रभ देहो निवास,
0: सर्व सुख नानक परगास, श्लोक
1: स्वर्ग।

पिंजरा जल चुकया सी, घर जल चुकया सी, घर रहने दे लायक नहीं रहा सी। फिर भी उस सूक्ष्म शरीर ने अस्थूल शरीर दे प्रवेश करने दी पूरी कोशिश की थी। अग उस सूक्ष्म शरीर नो नहीं साड़दी, पानी नहीं डोबदा। उस शरीर दे प्रवेश करके राम राय उच्ची आवाज दे बोले, दुष्टो मसंदो, तुसी मैनू जिंदा साड़िया है, गुरु थानू जिंदा साड़ेगा। तुसी मैनू जिंदा जला दिता है, गुरु थानू जिंदा जलाएगा। इन्हां सारिआं मसंदां नू देहरादून दे जिंदा जलाया गया। इस तरह दी अनेकां घटनावां ने आपां जितने बैठे ने इतने सत्संग दे सूक्ष्म शरीर होणगे, इतने होणगे। किहड़े सूक्ष्म शरीर? प्रथम ते उह सिद्ध पुरश जो इस अस्थूल देही दे किधरे भी होन ते किसे सत्संग नू मन भावदा उह देख लैन दूरों, ते इस शरीर नाल पहुंचना बड़ा औखा होवे, सूक्ष्म शरीर कढ लैंदे ने पहुंच जा। प्रथम। दूसरा, जिन्हों की मौत हो गई, शरीर की मौत हो गई, ये ढेरी हो जाता है, मिट्टी हो जाता है, सूक्ष्म शरीर ना जलाया जाता है ना ढेरी होता है। आम हालात विच शरीर की मृत्यु तो बाद सूक्ष्म शरीर 13 दिन के अंदर किधरे ना किधरे गर्भ विच प्रवेश कर जाता है। हर वक्त मौत हो रही है, हर वक्त गर्भ दे प्रवेश करने की सहूलियत संसार दे मौजूद है। 13 दिन के अंदर अंदर इस सूक्ष्म देही किधरे ना किधरे प्रवेश कर जाती। जो आम साधारण लोग ने, साधारण किसनों कहोगे, सच भी बोलते रहे, झूठ भी बोलते रहे, पुन भी करते रहे, पाप भी करते रहे, सत्संग भी करते रहे, कुसंगत भी करते रहे, चल के गुरबाणी की कथा भी सुनीए, गुरबाणी का पाठ भी करिए, गंदे गीत भी अलापीए, कदम अगे चलते रहे, कदम पिछे चलते रहे, ना अगे गए ना पिछे गए, उत्थे दे उत्थे इन्हां नूं साधारण कहिंदे। इह 13 दिन के अंदर किधरे ना किधरे गर्भ दे प्रवेश कर जाते। जिहड़े असाधारण, साधारण नहीं ने, असाधारण। असाधारण कौन? बड़ा भजन कीता है, बड़ा नाम जपे, बड़ी सेवा कीती है, बड़ी बंदगी कीती है, लेकिन मोक्ष गति तक नहीं पहुंच सके, दर तक नहीं पहुंच सके, घर तक नहीं पहुंच सके, रास्ते च ही रह गए। दर दी समझ नहीं सी, समझ सी, घर दी समझ नहीं सी, समझ सी, फिर क्यों नहीं पहुंचे? वाट लंबी है, पेंडा बिखड़ा है। तुसी आखोगे ओ रस्ता केड़ा है, ओ पेंडा केड़ा है, हुण मैं अर्ज करा ओ चलण दे नाल ही रस्ता बनदा। उंज कोई नहीं, उंज कोई नहीं। दो पंक्तियां मैं थोनू सरवण करावा। गुरमुख खोज अगम है, ज्यों जल अंदर मीन फिरंदा, गुरमुख खोज अलक है, ज्यों आकाशे पंख उड़ंदा, मच्छी जैसे पानी विच चलदी है, उहदे चलण नाल रस्ता बनदा है। उंज कोई रस्ता नहीं, कोई रस्ता नहीं, चलदी है फिर रस्ता बनदा है, उंज नहीं है। पंछी आकाश दे जद उड़दा है, उड़दे ही मार्ग बनदा है, उंज कोई मार्ग नहीं है। गुरमुख अभ्यासी जैसे वाहिगुरु वाहिगुरु जपदा है, जपण नाल रस्ता बनदा है, उंज कोई रस्ता नहीं, कोई रस्ता, जपदे रस्ता बने। गुरमुख खोज अगम है, ज्यों जल अंदर मीन फिरंदा, मच्छी चल पई रस्ता बनदा गया। इन्हें जप आरंभ कर दिता है अमृत वेले, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, कि जपना व्यर्थ नहीं जाएगा, एक तिल नहीं बनेगा ले व्यर्थ नहीं जाएगी, रास्ता बनेगा। ये गल वखरी है
के जीवन रस्ते ची रह जाए या घर पहुंचे।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु
वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे

वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु।

0: कर्म बड़ा कठिन है ना। दया करनी, दम रखना, दमन करना, संयम रखना, कर्म बड़े औखे ने। सच्चे पातशाह किताबां पढ़निया, ग्रंथ पढ़ने, बड़ी एनर्जी लगती। तुसी यह भी कह दिता पौन हारी, कोई साधना है तो पौन दा हार कीता, बड़ी कमाई होवे ताई बंदा जीव दे चस्के ते रोटी ते काबू पाए। महाराज जिन्ना ने ग्रिस्त भी नहीं धारण किया, अपने आप नूं रोक के रखिया। पौन आहार जति जत तार, सवे सो विचार हजार कह देख। हजारा महाराज कहिंदे मैं देखे जी सतगुरु। फिर कहना की चाहते महाराज? कहिंदे बस इको गल कहनी चाहना, श्री भगवान भजे बिन भूपत। दान कर रहा पर सिमरन नहीं कर रहा, विखावे दा तीर्थ नहा रहा पर अंदर दी मैल नहीं धो रहा। बार मुखी इंद्रिया दा दमन करदा पे पर फुरने ते काबू कोई नहीं, मनवा काबू च नहीं। महाराज कहने बार मुखी पाठ करदा, पाठ जबान कर दी, मन पता नहीं की पड़ी जांदा। देखो इस गल नूं सुनो गुरु साहब जी की, ए खंडन दी गल थोड़ा जी, ए तां महाराज सुमार्ग पांदे पए आ, सही रस्ता दस रहे। सतगुरु कहिंदे ने श्री भगवान भजे बिन भूपत। श्री भगवान परमात्मा वाहिगुरु जी सब दा श्रोमणी, माया दा भी पति। इत्थे भूपत दर्थ दास ने वाहिगुरु मालक कीता, क्योंकि इहदे विच राज साज दा जिक्र नहीं, इह तां सारा कर्म कांडियां उहनां दा जिक्र है जिहड़े कठिन तप कर रहे। गुरु साहिब कहिंदे ने श्री भगवान भजे बिन भूपत। उस मालक वाहिगुरु दे सिमरन तो बिना, ओदे भजन तो बिना, महाराज कहिंदे ने एक रति बिन, एक विच रत्ते तो बिना, रत्ती नहीं सिमरन रत्ते जाना, एक रति बिन एक सिमरन विच रंगण तो बिना, एक ना लेख है, एक ना लेख है। महाराज कहिंदे जेड़े मैं उत्ते गिण के आया कि तीर्थ नान दया दमदान, एक ना लेख है। सो संयम नेम अनेक बशेख है, एक ना लेख है। इस तरह अर्थ होणगे दे, इन्हां विचों एक भी लेखे च नहीं। वेद पुराण कतेब कुरान, जमीन जमान सबान कपेख है, एक ना लेख है। सिमरन तो बिना एक भी लेखे च नहीं। पौन आहार जते जते जतार, सब ऐसो विचार हजार का देख है पर एक ना लेख है। इस तरह अर्थ सारे सवैये दे होणगे। इन्हां विचों एक सिमरन तो बिना, बंदगी तो बिना, नाम तो बिना, कुछ लेखे च की पाएगा तेरे हजूर सच्चे पातशाह। इहदे सारे सवैये दा दाता जी दा निचोड़ इह वे जी, बनारसी तप करै उल्ट तीर्थ मरै। भगत नामदेव जी गुरु ग्रंथ साहिब दा शब्द, बनारस विच उल्ट के तप करे ते उत्थे मर भी जाए। बनारसी तप करै उल्ट तीर्थ मरै, अगन दहै जौंदा अग भी साड़दा धूनिया च। बनारसी तप करै उल्ट तीर्थ मरै, अगन दहै काया कल्प की जय। कल्प चिरजीवी रखने लई दवाइयां खानियां, जड़ियां बूटियां जोग मत वालियां। काया कल्प की जय, असमेद जग की जय। आ जे इस सवैये दे अर्थ, ओ जग करे जिदे विच घोड़ियां दी बलि दित्ती जांदी, असमेद जग। असमेद जग की जय, सोना गर्भदान की जय। सोना फरूट विच रख के जिवें पेठा नहीं हुंदा, चीर के विच सोना भर दिता, उत्तो बंद कर दिता किसी नूं पता ना लगे। गुरु ग्रंथ साहिब दुआई देख के कहिंदे ने लोको समझो इस गल नूं, बनारसी तीर तप करै उल्ट तीर्थ मरै, अगन दह काया कल्प की जय, असमेद जा की जय, सोना गर्भ दान दी जय, राम नाम सर तौ ना पूछै। श्री भगवान भजे बिन भूपत, राम नाम सर तौ ना पूछै। छोड़ छोड़ रे पखंडी मन, कपट ना कीजै, खरका नाम नितै नित दीजै। गंगा जो गोदावर जाइए, कुंभ जो केदारा नहाइए, गोमती सहस गौ दान कीजै। हजारा गावां दा दान कर दे तू गोमती दे कंडे, ए भी नदी। महाराज कहिंदे ने आत्म जो नरमाइल कीजै, आप बराबर कंचन दीजै, राम नाम सर तौ ना पूछै। अस दान गज दान, सेजा नारी भूम दान, ऐसो दान नितो नित कीजै। घोड़िया दा दान कर, गवां दा दान कर, इस्त्री दा दान कर, पर सच्चे पातशाह किन्ने सिमरन दे तुल कुछ भी नहीं।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington. 1550 AM Gurbani segment is brought to you in memory of Sardar Ajit Singh Bad and Sardarni Surinder Kaur Bad. 1550 radio de utte Gurbani de kise vi program nu sponsor karna chahunde ho ta call karo 604-900-7790.
2: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਲਸੇਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, 2990152 ਸਟਰੀਟ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਨ 24 ਸਪਟੈਂਬਰ ਤੋਂ 30 ਸਪਟੈਂਬਰ ਤੱਕ। ਲਾਲ ਗੰਡੇ 25 ਪੌਂਡ ਦਾ ਬੈਗ 16.98 ਦਾ, ਪੀਲੇ ਗੰਡੇ 50 ਪੌਂਡ ਦਾ ਬੈਗ 16.98 ਦਾ, ਅਤੇ ਜੰਬੋ ਸਾਈਜ਼ ਗੋਭੀ ਦਾ ਫੁੱਲ 3.99।

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री प्लेस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
0: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
3: The Surrey Crime Prevention Society is looking for new volunteers. Report suspicious activities in your neighborhood with the Citizens Community Safety Watch program, or take part in community safety tours by observing local malls, parks, transit hubs, rec centers, and libraries. Help keep our roads safe with the Speed Watch program, or adopt a street and help our neighborhoods become anti-graffiti communities. The Surrey Crime Prevention Society also needs volunteers for the office, special events, youth mentors, and students. PreventCrime.ca, an initiative of Pulse FM Cares.

कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर काल मूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद सर्वशील ममं शीलं सर्व पावने मम पावन सर्व कर्तव्ये ममं कर्ता नानक लेप छेप नाल पियते। सन्माननीय गुरु रूप सत्संग जीओ, गुरवाणी विचार आरंभ करा पेश कर सनेमर गुरुदेव की फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस वक्त जो सतगुरु ने ख्याल बख्शे ने थोड़े जिया समय च, वो मैं थोड़े सामने रखण दी निमाणी कोशिश कर रहे हैं। दो पंक्तियां नू आधार बना के है हजूर कत दूर बतावो बुंदर बांधो सुंदर पावो। पंक्तियां मैं फिर दोहरावां, है हजूर कत दूर बतावो बुंदर बांधो सुंदर पावो। दूर क्यों कहंदे हो? जगत विच जो कुछ भी सानू मिलदा है एक दिन बिछड़दा है। कुछ भी मिले दूर क्यों जाइए? तन मिलदा है तन भी बिछड़ जांदा है। मां बाप मिलदे ने बिछड़ जांदे ने, परिवार दे संबंध बनदे ने टुट जांदे ने, और इस तरह यार दोस्त मिलदे ने मित्र मिलदे ने संबंधी मिलदे ने आखिर बिछड़दे ने। या असी विछड़दे हैं या वो विछड़दे ने, वारी वारी सब दा विछोड़ा होंदा है। पातशाह दी बाणी कहंदी है एक सदी भी मिलिया होया है, जन्म तो मिलिया होया है, कदी बिछड़िया भी नहीं, लेकिन उसका पता नहीं है, बोध नहीं है। सत्संग दा मतलब इन्ना है सानू उसकी समझ आ जाए जो कदी बिछड़दा ही नहीं। सानू उसकी समझ आ जाए जो सब थां ते है। हर जगह मनुख दा परिवार नहीं है, हर जगह मनुख दे मित्र नहीं है, हर जगह मनुख दा वतन नहीं है, हर जगह मनुख दा घर नहीं है, हर जगह परमात्मा है, हर जगह ईश्वर है। सदा अंग संगे अभंग अंग बेबूते, हर वक्त मनुख दे नाल मित्र नहीं आंदे, पुत्र नहीं आंदे, परिवार नहीं आंदा, निरंकार हर वक्त नाल। सदा अंग संगे अभंग अंग बेबूते, जो सदा संग है वो भूल गया कि जिन्हां दा संग वक्ती है कदी कदाई है वो याद दा हिस्सा नहीं, याद आंदे। तो हुण मैं अर्ज करा जिस दी याद आवे संबंध जुड़ जांदे ने, जिहड़ा भुल जावे संबंध टुट जांदा। रिश्ते याद देने, याद चल रही है रिश्ता जुड़े होया है, भुल गए हैं रिश्ता टूटे। असी ईश्वर नू गवाया नहीं, गवा नहीं सकते, बुलाया है बुला सकते हैं। लफ्ज में फिर दोहरावा, असी ईश्वर नू गवाया नहीं, गवा नहीं सकते, बुलाया है बुल सकते। इस वास्ते संसार दे सारे अवतारी पुरुष गुरु जना ने एक आवाज होके आख्या याद करो। उर्दू च कहंदे ने याद करो, पंजाबी च कहंदे ने चेते करो, संस्कृत च कहंदे ने सिमरन करो। सिमरन करो, चेते करो, याद करो किस नू जिन्हों भुल गए, जिन्हों भुल गया। भुले क्यों? समझ नहीं और अकल प्रभावित भी नहीं। जिस तो मन प्रभावित हो जाए, समझ प्रभावित हो जाए, वो याद का हिस्सा बन जाता है, भुलदा ही नहीं। पुत्र नू याद करना होवे वाजा वजाण की लोड़ नहीं, तबला खड़कान की लोड़ नहीं, पुत्र की याद आपे ही आउंदी। मित्र नू याद करना होवे कथा कहानियां की लोड़ नहीं है, आपे ही याद आउंदा।
परिवार नू याद करना है, धन संपदा नू याद करना है, पदार्थां नू याद करना है, कोई फिलसफा घोटन की लोड़ नहीं, किसी रागी सिंह नू कहन की लोड़ नहीं, तू राग अलाप जरा मैं परिवार नू याद कर लवा, पदार्थां नू याद कर लवा, उन्हां दी याद आपे आमदी, क्यों उन्हां दी समझ है ते समझ प्रभावित है, जिस तो मन प्रभावित होवे वो याद का हिस्सा बन जाता है, जिस तो मन प्रभावित नहीं, कुछ है मामूली है एवे है या है ही नहीं, वो याद का हिस्सा नहीं बनता, वो याद नहीं आता। कमाल की गल है, पुत्र याद आंदा है, मित्र याद आंदा है, परिवार याद आंदा है, पदार्थ याद आंदे ने, धन संपदा याद आंदी है, संसार याद आंदा है, बोलता है तो केवल निरंकार ही भुलदा है और सारे जगत नूं भुलदा है। जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं आते उते भुले हुए ने, पर जिहड़े आउंदे ने उन्हां नूं भी भुलदा है। इस चक्कर च ना पैना, 1000 किधरे सत्संगी बैठे हन मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे च, तो मैं इतनी गल दावे नाल कह सकदा कोई एक अद होवेगा जे याद आउंदा होवेगा, बाकी नहीं। बाकियां लई गुरुद्वारे आउणा भी मनोरंजन है, कथा कीर्तन भी मनोरंजन है, इह भी मैं अर्ज करदे। जो याद दा हिस्सा बने, समझ लो मन उस तों प्रभावित है। मनुख पदार्थ तो प्रभावित है, परमात्मा तो प्रभावित नहीं। तो पदार्थ की खातर परमात्मा छोड़िया जा सकता है, परमात्मा की खातर पदार्थ नहीं। मनुख परिवार तो प्रभावित है, निरंकार तो प्रभावित नहीं। परिवार की याद है, निरंकार की याद कोई नहीं। मनुख धन तो प्रभावित है, धर्म तो नहीं। इस वास्ते धन की खातर धर्म छोड़िया जा सकता है, परिवार की खातर निरंकार बुलाया जा सकता है, संसार की खातर पदार्थां की खातर परमात्मा नूं परे सुटिया जा सकता है। और ऐसा है कि ठीक है, पदार्थ उसे ने बनाए ने, संसार उसे ने बनाया है, ते परिवार के संबंध भी उसे ने बनाए ने। दिया पूत सब हर के किए, सबना को संबंध कर दिए, मात पिता सुत बंधप भाई, नानक हुआ पार ब्रह्म सहाई। ये सारे रिश्ते ते बनाए उसे ने। पर कमाल की गल, रिश्तेदार याद आवन, जिसने रिश्ते बनाए ने, ते जो महान रिश्तेदार है कदी बिछड़दा ही नहीं, वो भुल जाए। इस वास्ते दुनिया दे तमाम अवतारी पुरुषों ने आख्या है, याद करो। कीर्तन मनुख कर रहा है, कीर्तन सुन रहा, उसकी याद कोई नहीं। पाठ मनुख कर रहे, उसकी याद कोई नहीं। कथा कर रहे, उसकी याद नहीं। दान पुन कर रहे, सेवा कर रहे, उसकी याद नहीं। और जितनी चिर तक उसकी याद नहीं, हिरदा पवित्र नहीं हो सकता। जितनी चिर तक उसकी याद नहीं, खेड़ा नहीं हो सकता, खुशी नहीं हो सकती। तो रोंदे पिटदे मिलणगे कीर्तन करने वाले, रोंदे पिटदे मिलणगे पाठ करने वाले, अक्सर दुखी मिलणगे गुरुद्वारे मंदिर मस्जिदां च आने वाले। ऐसे कुछ भी नहीं, एक सच्चाई है। ये हुण मैनूं नहीं पता किन्नी क सच्चाई तुसीं सुण लैंदे हो, तो बड़ा हाजमा किन्ना क है। अगर परमात्मा आनंद है तो फिर मनुख दुखी क्यों है? गुरुद्वारे आण वाला तो दुखी नहीं होना चाहिए। अगर परमात्मा आनंद है, खुदा आनंद है, तो नमाजी तो दुखी नहीं होना चाहिए। अगर ईश्वर सुख का सोमा है, तो मंदिर विच पूजा पाठ करने वाला तो कल्पना विच दुख तो नहीं होना चाहिए। पर मैं अर्ज करा, रो रहे ने मंदिरां विच आने वाले, और तरह तरह के रोने धोने धो रहे ने गुरुद्वारियां च आने वाले, नमाजी अपनी थां ते रोना पिटना जारी रखी बैठे ने। परमात्मा आनंद है, पर खुदा भी अगों सजदे करने वाला दुखी है। परमात्मा आनंद है, कथा कीर्तन करने वाला रो रहा है, कुछ भी नहीं है, हकीकत है। परमात्मा आनंद है, ये धार्मिक मंदिरां दे छाण वालियां कोल कुछ भी नहीं है। कारण मन प्रभावित नहीं है, क्यों समझ नहीं है। तो मैं अक्सर बयान करदा हुंदा ते दोहरा दया, जो मेरी समझ दे च नहीं है, नहीं है। होवेगा परमात्मा, है परमात्मा, मेरी समझ दे च नहीं है तो नहीं है। है परमात्मा, ईश्वरी है, उस तो बिना कुछ नहीं, पर मेरी समझ दे च नहीं है तो नहीं है, मेरे चेते दे च नहीं है तो नहीं है। जरूर गल पकड़ दे चाहिए होवेगी कि
क्या वाकई परमात्मा समझ दे चाह जांदा है? नहीं, समझ समझ के एक समझ मिल दिए कि हे प्रभु तू मेरी समझ दे नहीं आ सकता, तू मेरी समझ दे नहीं आ सकता। क्यों? तू समर्थ बड़ा मेरी मत थोरी राम, तू इतना वड्डा है, इतना वड्डा है असीम, मेरी सोचन शक्ति बहुत छोटी बहुत छोटी बहुत छोटी, मैं कितने तेनु समझ सकता। समझ समझ के ये समझ मिलती है कि हे प्रभु मैं तेनु समझ नहीं सकता। तो समझ प्रभावित हो जाती है, उन्हें पता चल जाता है वो तो सागर है, तो मेरी अकल तो एक प्याला है, प्याले सागर किथे आएगा। तू समर्थ वड़ा, तो जैसे मनुख की अकल प्रभावित होती है मनुख याद कर लग पैंदा है। बिशरत ना ही मन ते हरी, बड़ी कीमती पंक्ति है, प्रभु ते भुलदा ही नहीं, हुण बुलाण दी लख कोशिश करिए नहीं भुलदा। बिशरत ना ही मन ते हरी, क्यों? समझ आ गई। की समझ आ गई? समझ समझ के ए समझ आई है, हे प्रभु मैं सारा तेनु समझ नहीं सकता, मैं तेनु याद कर सकता, मैं तेनु समझ नहीं सकता। उर्दू दे एक माया ना शायर होए ने, कोई गालबन 150 साल होया है, बहादुर शाह जफर दे जमाने विच उन्हां दे दरबारी शायर सन उस्ताद जौक। वो कहंदे ने हम जानते थे कि इलम से कुछ जानेंगे, कहंदे पढ़न वास्ते मैं पिया स्कूल ते सोचदा सी कुछ समझ जावांगा, पढ़ लिख के कुछ पता चल जाएगा खुदा बारे संसार बारे परमात्मा बारे। हम जानते थे कि इलम से कुछ जानेंगे, पर जाना तो ये जाना कि ना जाना कुछ भी। पढ़ पढ़ के जान जान के मैं ये जाने है कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। एथिन दा प्रसिद्ध संत सुकरात, वो अपनी ऑटोबायोग्राफी च लिखता है अपनी आप बीती दे, कहिंदा जद मैं बच्चा सी बच्चियां नाल खेडदे आया मैं डिंगा मारदा सी कि मैं सब कुछ जानदा, मैनू सब कुछ पता है, तुसी कुछ भी पुछो तो मैं दसांगा। कहिंदा बच्चियां ते मेरा रोब बनिया रहिंदा सी, बच्चे मैनू नेता मनदे सन, लीडर मनदे सन, मुखी मनदे सन, बच्चे मेरा सत्कार करदे सन और मैं नेता बनिया रहिंदा सी, मुखी बनिया रहिंदा सी, और बच्चियां तो मैं दावा करदा सी मैं सब कुछ जानना, मैं सब कुछ जानना। अगां चल के महापुरुष कहिंदा है मैं जवान होया, तो जवाना दी महफिल विच मैं एक कहना शुरू कीता कुछ ऐसा भी है मैं नहीं जानता। सारे सवालों का जवाब नहीं देंगा, क्यों? कुछ ऐसा भी है जो मैं नहीं जानता। फिर अगां चल के लिखदा है अज मैं बुढ़ा हो गया, अज मैं बिरध हो गया, और मैं ऐलानिया कह रहा मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं जान जान के ए जाने है मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने सोई अजान कहे मैं जानिया, महामूर्ख उसनु समझ लो जो दावा करे मैं जान ले। सोई अजान कहे मैं जानिया, जानन हार न जाना रे, पर जिसने जान लिया कि मैं नहीं जान सकता ये जान ले। बड़ा वड्डा जानना है, बहुत वड्डा ज्ञान है कि जिसने ये जान लिया कि मैं नहीं जान सकता, तू इतना महान है, इतना महान है, मैं नहीं तेनू नाप सकता, मैं नहीं पैन तोल सकता, मैं नहीं तेरी सिफतां की गिनती कर सकता। वो चीज पकड़ दे आ जाती है, समझ दे आ जाती है, जो नाप दे आ जाए, तोल दे आ जाए, गिनती च आ जाए, पर जो गिनती च भी ना आवे, तोल दे च भी ना आवे, नाप दे च भी ना आवे, समझ दे च भी ना आवे, तो फिर किस तरह बयान करोगे? असीम है,
ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਗਵਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਗਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਇੱਕ ਮੱਛਲੀ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਔਰ ਅਕਸਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੱਛਲੀ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਸਥਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਔਰ ਅਕਸਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੱਛਲੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਕਸਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਖ ਵੀ ਮੱਛਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ ਸਾਗਰ ਤੇ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਅਕਸਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਅਕਸਰ ਰੋਜ਼ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਅਕਸਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਖ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਮਨੁੱਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਈ, ਸਾਚਾ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰ ਜੀ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਥਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਥਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਚਾ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰ ਜੀਓ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਸੰਗ, ਇਹ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ, ਉਸਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਗਵਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਗਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਭੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਭੁਲਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਮਹਾਂ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਮਹਾਂ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤੁਧ ਚਿਤ ਆਏ ਮਹਾਂ ਆਨੰਦਾ, ਜਿਸ ਵਿਸਰੇ ਸੋ ਮਰ ਜਾਏ ਜੀਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਨਨ ਭਗਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਸੁਣਿਆ, ਕੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀ ਸੁਣੇ। ਲੋਗਨ ਰਾਮ ਖਿਲਾਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਚੱਲਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਚ ਮਨੁੱਖ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਲ ਕਾਰਨ ਫੂਲੀ ਬਨ ਰਾਏ, ਫਲ ਪਾਕਾ ਤਬ ਫੁੱਲ ਵਿਲਾਏ। ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲ ਨਿਕਲਦਾ, ਫੁੱਲ ਜੜਦਾ। ਗਿਆਨੇ ਕਾਰਨ ਕਰਮ ਅਭਿਆਸ, ਗਿਆਨ ਭਇਆ ਤਬ ਕਰਮੇ ਨਾਸ। ਜਦ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਛੁੱਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੋ ਗਿਆਨ ਦਾ ਫਲ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਔਸ਼ਧੀ, ਅਜੇ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਰੋਗ ਦੇ ਜਾਣਿਆਂ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਰੋਗ ਦੇ ਮਿਟਦਿਆਂ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸੁੱਟਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਰਥ ਦਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਗਤ ਹੈ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਜਗਤ ਹੈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਫੋਕਾ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਸਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਤੇ ਠੀਕ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਜਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਇੰਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋ ਸਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਕਾ ਕਲਮ, ਚੱਚਾ ਚਾਕੂ, ਛੱਛਾ ਛਤਰੀ, ਐੜਾ ਅੰਬ, ਅੰਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਅੱਖਰ ਐੜਾ ਹੈ।
ਗੱਗਾ ਗਣੇਸ਼ ਪਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗੱਗਾ ਗਣੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੱਗਾ ਗਧਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗਣੇਸ਼। ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹੀ ਦੇਸ਼ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਵਤਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਦੇਵੇ ਜੋਤੀਆਂ ਦੇਵਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੂੜਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ, ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਜਨਕ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਰਮਿਕ ਸਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਧਰੇ ਹਰੀਸ਼ਚੰਦਰ ਸੀ, ਕਿਧਰੇ ਜਨਕ ਸੀ, ਰਾਮ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸਨ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸਨ ਦੁਆਰਕਾ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਹਿਲੇ ਸਨ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਲੇ ਸਨ, ਰਾਜਾਬਾਦ ਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਮਤੀ ਘਰ ਵਿਚ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿਚ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਫੌਜ ਦੀ। ਆਖਿਆ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1000 ਖਾਲਸਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਬਗਾਵਤ ਹੈ, ਮੈਥੋਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ 1000 ਖਾਲਸੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਭੇਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੱਖਣੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜੋ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਜੋ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਜੋ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੋਈ ਨੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਚਲਾਏ, ਉਹ ਮਿਕਸ ਜਿਹਾ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਰੰਗ ਰੂਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਧਰਾ, ਤਮਿਲ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜੈਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ ਦੱਖਣੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਪਿਆਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਦ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ 1000 ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੇ ਅਮਨ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਾਨਣੀ ਭੇਜੀ, ਚੰਦੋਆ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਕਰੀਬ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹ ਚਾਨਣੀ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਭਾ ਦੇ ਚ ਆਏ, ਨਿਗਾਹ ਚਲੀ ਗਈ ਚੰਦੋਏ ਤੇ, ਚਾਨਣੀ ਤੇ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਹੀਰੇ ਜੜਤ, ਮੋਤੀ ਜੜਤ, ਨੀਲਮ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਜੜੇ ਹੋਏ, ਜਰੀ ਦਾ ਕੰਮ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਈ ਦਫਾ ਇਸ ਚਾਨਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ 1 ਮਹੀਨਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਚੇਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਣ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਚਾਨਣੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਚੇਚਾ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਖੁਲਵਾ ਕੇ। ਬਦਕਿਸਮਤ ਇਹ ਸਨ 84 ਦੇ ਚੋਂ ਜਲ ਕੇ ਖਾਕ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਚਾਨਣੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਨਣੀ, ਇਹ ਚੰਦੋਆ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ? ਅਹਿਲਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੇਟ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਾਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ ਖੜੇ ਨੇ।
थोड़ा जहा सोच ही पै गए तो फिर कहन लगे उतारो इसनों उतारो। जिन्हां अहलकारा ने चाननी बनवाई सी उन्हां नूं ते कंबड़ी छिड़ गई जिवें कुछ गलती हो गई जिवें भुल हो गए। एक ने हिम्मत करके पूछ लिया महाराजा साहब क्या ये चाननी थोड़ी शान दे छाया नहीं है असी ते खूबसूरत कीमती जान के बन दिती सी आप दा हुक्म उतारण दा उतार दे हां क्या वाकई ये आप दी शान दे छाया नहीं है। पता है महाराजा साहब की कहने इतनी सुंदर है ये इतनी खूबसूरत है ये इतनी मनमोहक है ये दरबार साहब दे सिर ते चुलनी चाहीदी है ये गुरु रामदास जी दे सिर दा चंदोआ बनना चाहीदा मेरे सिर दा नहीं। उस वक्त भजवा दिती उतार के घर विच ताकत वधदी जा रही है साजो समान वधदा जा रहा है पदार्थ वधदे जा रहे ने महाराजा साहब दे हिरदे विच परमात्मा दा प्रेम वधदा जा रहा है राज सता वधदी जा रही है गुरु भक्ति भी वधदी जा रही है। आम की आउंदा है घर विच पदार्थ आने शुरू होए ते घर विचों रहत वैत निकलने शुरू हो गए धन चौखा आना शुरू हो गया हिरदे च धर्म निकलना शुरू हो गया घर पदार्था नाल भर गया हिरदा परमात्मा तो खाली हो गया ओदी याद तो खाली हो गई। इस तरह ही होंदा है राज सिंघासन पे बैठ के श्री कृष्ण दी आत्मा तो गीता दा फलसफा निकलदा है राम दे रोम रोम विच मर्यादा निकलदी है महाराजा रणजीत सिंह दे रोम रोम विच भक्ति निकलदी है हरिश्चंद्र दे रोम रोम विच सच्चाई निकलदी है। ये देश धार्मिक राजियां दा देश बदकिस्मत अधार्मिक लोगों के हाथ च आ गया और देश विच ऐ जो पस्ती खास करके इखलाकी पस्ती हर पक्ष की जिहड़ी पस्ती असीं देखदे हां भावें कोई कुछ आखे मैं इसका एक ही कारण समझदा धर्म निरपेक्ष सियासत राजनीति धर्म चाहिदा व्यवहार विच ताकि व्यवहार विच बेईमानी ना होवे धर्म चाहिदा परिवार विच ताकि परिवार विच कलकरेश ना होवे रिश्तियां दे दराणा ना पैन धर्म चाहिदा राजनीति विच ताकि राजनीति विच खोआ खाई ना होवे जो है तशद्दत ते जुल्म ना होवे और खोआ खाई ना होवे। हुण ते की है जो एक बंदे दी जेब कट लवे वो चोर है जेब कतरा है जिहड़ा सारे मुल्क दी जेब कट लवे मिनिस्टर है चीफ मिनिस्टर है जो किसे एक बंदे दी मूंह दी बुरकी खो लवे असी उस नूं डकैत कहने हां चोर कहने हां पर जो बंदियां दे नाल नाल गवां दा चारा भी सारा हजम कर जाए मिनिस्टर होंदे वो ताकतवर ने। हालात ए ने एक हकीकत है एक सच्चाई है मुख्तसर जो है मैं इस तरह देश धार्मिक सी सारे ऋषि मुनि संत महापुरुष इस देश विच पैदा हुए इस देश की ऐसी हवा ऐसी फिजा ऐसी वाइब्रेशन मैं देखता बाहर दे देशों की भी अपनी एक वाइब्रेशन उत्थे साइंटिस्ट पैदा होंदे ने विज्ञानक पैदा होंदे ने दार्शनिक पैदा होंदे ने मनोविज्ञानक पैदा होंदे ने संत ने संत इस देश ने पैदा किए इस देश की फिजा इस देश के हालात इस देश का वातावरण। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा भाई साहब भाई नंद लाल कहंदे ने गम के बाशद चीज तो शादी गम की है गम किसनों आखोगे गम और शादी की है खुशी की है शादी दे अर्थ आनंद कारज विवाह नहीं है ये गल वखरी साडे देश दे शादी दे अर्थ विवाह करदे ने ये लफ्ज फारसी जबान दा है ईरानी भाषा दा लफ्ज है ई दिल शाद अस्त ए दिल बड़ा खुश है शाद दा मतलब खुश शादी दा मतलब खुशी ई खाना है शादी अस्त इस घर दी खुशी है विवाह लई आनंद कारज लई उन्हां कोल दूजा इस्लामी शब्द है निकाह
मैं इस घर विच निकाह हो रहा है। निकाह तो मुराद ने विवाह हो रहा है, आनंद कारज हो रहा है। शादी लफ्ज वो खुशी लई वरतदे ने, पर साडे देश विच इस दे अर्थ विवाह बन गए, निकाह बन गए, आनंद कारज बन गए। भाई साहब भाई नंद लाल शादी लफ्ज नूं खुशी दे रूप च लैंदे ने। गम चे बाशद गम की है, चीज तो शादी खुशी की है। असीं पुछ सकदे हां भाई नंद लाल कोल, सानूं इतना भी ज्ञान नहीं खुशी की है ते गम की है, यकीन जानो नहीं पता। ना खुशी दे कारणां दा पता है, ना गम दे कारणां दा पता है, ना दुखां दे बीज दा पता है, ना सुखां दे मूल दा पता है, नहीं पता मनुख नूं। ये हकीकत है। इसे वास्ते सुख के हेत बहुत दुख पावत सेव करत जन जन की। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते सारे उद्दम वसीले ते बंदा सुख वास्ते करदा है, पल्ले सिवाय दुख दे और कुछ नहीं पैंदा। इसका मतलब है जेड़ा बीज बो रहा सी सोचदा सी इस तो सुख निकलेगा, निकलिया दुख। सुख के हेत बहुत दुख पावत सेव करत जन जन की। संसार विच पदार्थां राही परिवार राही धन राही लोड़ां दी पूर्ति हो सकदी है, सुख नहीं मिलेगा। नहीं तो सारे धनवान सुखी होने चाहिए ने, सारे ही रो रहे ने। पुत्र मिल गया एक लोड़ां दी पूर्ति हो गई है, सुख नहीं मिलेगा। नहीं तो सारे पुत्रां वाले सुखी होने ही चाहिए। पति मिल गया है, पत्नी मिल गई है, जैस घराना मिल गया है, लोड़ां दी पूर्ति हुई है, सुख नहीं मिलता। नहीं तो सारे परिवारक जीवन वाले सुखी होने चाहिए। सब रोंदे पिटदे मिलते पैन, सुखी तो एक भी नहीं मिलता। सुख ना ही हर भगत बिना, मनुख नूं नहीं पता ना सुखां दे मोल दा ना दुखां दे मोल दा। गम चे बाशद गम की है, चीज़ ते शादी खुशी की है। भाई साहब खुद जवाब देंदे ने, लगदा है इंज उन्हां नूं भी पता सी आम बंदियां दे कोल सुख दुख दे जिहड़े बीज ने गलत ने, सूझ बूझ जिहड़ी है गलत है। गम चे बाशद गफलत अज यादे खुदा, परमात्मा नूं भुल जाना बस यही दुख है और कोई दुख नहीं। चीज तो शादी खुशी की है, याद आंबा मुंतहा, उन्हों याद करना ही खुशी है और कोई खुशी नहीं। अगर परमात्मा की याद नहीं तो चंगे परिवार के होंदया भी मनुख रोंदा रहेगा। जेब भरी हुई है धन नाल, पदार्थां नाल घर भरिया है, पेट भरिया है चंगे भोजन नाल, मान मर्यादा भी सब कुछ है, लेकिन रोम रोम इसका रोएगा तड़पेगा, क्योंकि परमात्मा की याद ने। और जितना जगत इस नूं कहेगा बहुत वड्डा मनुख है, क्योंकि चोटी का धनवान है। महाराज कहते बड़े बड़े जो दीशे लोग, तिनको व्यापे चिंता रो। बड़े रोगी मिलणगे, बड़े दुखी मिलणगे, परेशान मिलणगे, बेजार मिलणगे। गम चे बाशद गम की है, परमात्मा नूं भुल जाना। और खुशी की है, चीज तो शादी याद आंदा मनतेहा, उस ला इंतहा परमात्मा नूं याद करना बस यही खुशी है। उन्हों भुल जाना बस यही दुख है। और यह कितना का वड्डा दुख है, ये गुरु अर्जन देव जी महाराज दसते ने। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रो। मैं फिर दोहरावा, असी परमात्मा नूं गवाया नहीं, गवा नहीं सकते, भुलाया है, भुल सकते। जिन्हों भुल गया रिश्ता टुटदा है, जिसकी याद आवे रिश्ता जुड़दा है। कीर्तन एक बहाना है, कथा एक बहाना है, पाठ पूजा एक बहाना है, ये सारे धार्मिक मंदिर बहाने ने भी किसी बहाने नाल उसकी याद चल पाए। उद चित आए महा आनंद।

सुख नहीं है, रस नहीं है, रस पे मर चुके हैं, सुख पे मर चुके हैं, आनंद पे मर चुके हैं, सुकून मर गया है, शांति मर गई है, कुछ भी नहीं। ये तो अपनी लाश आप पे ढोंदा है। फर्क सिर्फ इतना है, किसे एक दिन चार मनुख की अर्थी चुक के शमशान घाट दे पहुंचा देंगे ने, पर ये अपनी अर्थी आप पे घसीटता है। दिसदा है जीवदा जागदा पे सिर्फ सौसा दे चलन नो, जीवदा जागदा नहीं आखीदा। ये भी मैं अर्ज कर दिया, जिन्ने चिर तक उसकी याद न चले तो चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए जियो। चेते शक्ति, याद शक्ति, एक प्रबल शक्ति परिपूर्ण परमात्मा ने सानू दिती है। अगर वो याद का हिस्सा बने तो याद का हिस्सा कदों बनेगा, जब समझ का हिस्सा बने, वरना नहीं बनेगा। रोज लोग कीर्तन करते ने सुनते ने भुल जाते, कथा करते ने सुनते ने भुल जाते, पाठ करते ने गुरुद्वारे आते ने मंदिर आते ने भगवान से भुल जाता है। जेडे नहीं आते वह भी भुले, जेडे आते उन्होंने भी भुले। कारण जिन्ने चिर तक समझ प्रभावित नहीं थे, समझ दे नहीं आता, वो याद का हिस्सा नहीं बन सकता। तो मैं फिर अर्ज कर दिया, समझ आ जाता है नहीं, समझ समझ के ये समझ आ जाती है, हे प्रभु मैं तेनों नहीं समझ सकता, पर मैं तेनों याद से कर सकता। इस दे उत्ते एक छोटा जिहा उदाहरण मैनू चेते आया। तेथिन दी गल है, सागर तट ते एक पांच साल साढ़े चार साल का बच्चा जारो जार रो रहा है। उस वक्त का एक महान संत सुकरात टहल दा होया उत्थे आया, देखदा बच्चा रो रहा है, कोल आ रहा, सिर ते हाथ रखिया, आखिया बेटे क्यों रो रहे हैं? उहदे हाथ विच प्याला सी, प्याला। कहण लगा बाबा ये सागर जेड़ा ना मैं प्याले च भरना चाहना, ये सागर मेरे प्याले च आना चाहिए, पर करा कि मैं काफी देर का थक गया, इस सागर मेरे प्याले च नहीं आता। कहिंदे ने बच्चे की यह गल सुन के सुकरात की भी चीख निकल गई, रोन लग पिया। फिर बच्चा कहण लगा बाबा तू ते संत है, फकीर है, तू भी मेरी तरह रोन लग पे, तेरा प्याला कित्थे है, तू क्यों रोन लग पे, तेरा प्याला कित्थे है? बच्चे की समझ च भी आ गया, रोना समझ दे चाहता है, हासा समझ दे चाहता है। मनुख जन्म तो जो लेके आता है संसार विच हासा ते रोना, बाकी भाषा मां तो सीखता है, समाज तो सीखता है, कोई मनुख भाषा लेके नहीं आता। एक बंगाली मां का बच्चा जो उसकी गोद विच है, पंजाबी मां की गोद विच दे दिता जाए, पंजाबी बोलेगा, बंगाली नहीं बोलेगा। एक ईरानी मां का बच्चा गुजराती मां की गोद दे देता जाए, यकीन जानो परशियन नहीं बोलेगा, गुजराती बोलेगा। ये बाद च मिलती है, भाषा समाज तो मिलती है, संस्कारां दे ते हसना ते रोना है। और ये सारी दुनिया का सांझ है, जब कोई हस रहा होवे असी इस तरह नहीं आखते कि हिंदी दे हसदा पिया या सिंधी दे हसदा पिया, इंग्लिश दे हस रहा या जर्मन दे हस रहा, पंजाबी दे हस रहा या बंगाली दे हस रहा, हस रहा है, हासा सांझा है, सारी दुनिया का सांझा है, एकदम समझ दे आ जाता है। रोना भी सांझा है, कोई रो रहा होवे असी थोड़ी आखते हैं गुजराती दे रो रहे, मराठी दे रो रहे, हिंदी दे रो रहे या संस्कृत दे रो रहे, इंग्लिश दे रो रहे। रोना एकदम समझ दे आता है, हासा एकदम समझ दे आता है। बच्चा भी समझ गया, बाबा रो पे है, फकीर ते रो रहे, बाबा तेरा प्याला कित्थे है? मेरा प्याला भी मेरे कोल है, ऐ मेरे बेटे तू सागर नू प्याले च भरना चाहना है, मैं पूरे दे पूरे परमात्मा नू खुदा नू अपने दिमाग विच भरना चाहना, जानना चाहना, पर तैथों मैनू शिक्षा मिल गई है, बड़ा ज्ञान मिल गया, सागर प्याले च नहीं आवेगा, सारे दा सारा खुदा मेरे दिमाग विच नहीं आ सकता, तैथों मैनू शिक्षा मिल गई, सागर प्याले विच नहीं आवेगा। बच्चे ने भी ये बोल सुन ले, सागर प्याले विच नहीं आवेगा, बिल्कुल कंडे ते चला गया समुंदर दे, और प्याला समुंदर दे